2.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कन तोहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन।

ये तो हाँ सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी मैं तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे ये ही बनी रिया कनिष्ठ सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेश्वरों तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दें कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहां सारी कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ए बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने पन दी।

91.2 MHz पर ए तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ए बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन।

0: क्या है?
1: क्या है ये?
0: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
0: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आजा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no!
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीवी जैसा बनता जा रहा है?

1.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ट्यून इन है आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आपकी रेडियो दोस्त सुषमा हाजिर हो चुकी है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दो सुषमा के साथ। श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दो सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दो सुषमा के साथ। श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलिए फिर आगे बढ़े एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन 91.2 FM। प्रस्तुत हैं आज के प्रमुख समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। एयरलाइंस के सभी पायलटों के लिए अब ड्रग टेस्ट जरूरी, DGCA ने दिए सख्त निर्देश। बिजली कटने से पहले मोबाइल पर आएगा SMS। हिमाचल में नई व्यवस्था लागू। हिमाचल में अब ऑनलाइन भी बन सकेगी परिवार नकल, की KYC जरूरी। भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का ऐलान। वर्ष 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच 3 चक्रवातों का खतरा, भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। नशे में डूबे बच्चे को छिपाए नहीं, 112 पर फोन करें, तत्काल मिलेगी मदद। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बदलेगी वर्दी, छात्र हरी और शिक्षक अलग रंग की ड्रेस में नजर आएंगे। अब समाचार विस्तार से। गणेश उत्सव पर गणेश प्रतिमा विसर्जन 14 सितंबर को जिला कांगड़ा के विभिन्न स्थानों में किया जाएगा। इस मौके पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा सभी उपमंडलाधिकारियों और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने सभी विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की पर्याप्त व्यवस्था, यातायात का सुचारू संचालन बनाए रखने, विसर्जन स्थल की बैरिकेडिंग, आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु सुरक्षा बल, स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय तथा पर्यावरण व जल स्रोतों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मिनी सचिवालय शाहपुर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU शिमला के मौजूदा बुनियादी ढांचे के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में सहयोग करेगी। प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उन्होंने विश्वविद्यालय को अपने संसाधन स्वयं सृजित करने पर भी बल दिया। बागवानी विभाग द्वारा मधुमक्खी पालकों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता शाहपुर के विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने। शिविर में स्मॉल हाइव बीटल से मधुमक्खियों को होने वाले नुकसान और इसकी रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। केवल सिंह पठानिया ने SDM शाहपुर को संबंधित पंचायतों के प्रभारियों के माध्यम से नुकसान का आकलन करवाकर जल्द विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि मामला मुख्यमंत्री एवं बागवानी मंत्री के समक्ष उठाकर प्रभावित मधुमक्खी पालकों को सहायता दिलाई जा सके। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिया है कि सभी पायलटों का कम से कम साल में एक बार ड्रग टेस्ट कराया जाए। ये फैसला हाल ही में एयर इंडिया की एक एयरबस A320 से जुड़ी घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी चिंताओं के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार विमान के उड़ान के दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक खराबी आई, इसके बाद ऑटो पायलट अलग हुआ और विमान में कुछ समय के लिए तेज झटके महसूस हुए। DGCA ने इससे पहले भी भारतीय एयरलाइंस को पायलटों की ड्रग टेस्टिंग के निर्देश दिए थे। अब जुलाई 2027 तक सभी पायलटों का एक बार सैंपल कलेक्ट कर टेस्ट किया जाए। विद्युत बोर्ड ने यह नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत बिजली कटौती से जुड़ी जानकारी उपभोक्ताओं तक SMS के जरिए पहुंचाई जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी फीडर या विद्युत व्यवस्था में खराबी आती है तो संबंधित SDO और JE को तत्काल सूचना मिलेगी। इसके बाद खराबी की स्थिति में कुछ ही मिनटों के भीतर उपभोक्ताओं को भी जानकारी दी जाएगी। इससे लोगों को अचानक बिजली जाने की परेशानी के लिए पहले से तैयार रहने में मदद मिलेगी। विद्युत बोर्ड की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं तक सही और समय पर सूचना पहुंचाई जाए। हिमाचल प्रदेश में नागरिकों के लिए एक और सुविधा शुरू की जा रही है। अब परिवार नकल प्राप्त करने के लिए पंचायत कार्यालय जाने के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकेगा। पंचायती राज विभाग ने ई परिवार रजिस्टर पोर्टल पर नई सुविधाओं और प्रक्रिया को लेकर जिला पंचायत अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत सचिवों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। नागरिक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव के पास आवेदन कर सकते हैं या ई डिस्ट्रिक्ट हिमसेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवार नकल लेने के लिए आवेदक को संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा। इसके बाद पंचायत सचिव ई परिवार रजिस्टर पोर्टल पर लॉगिन करके संबंधित परिवार की परिवार ID के आधार पर नकल जारी करने की प्रक्रिया पूरी करे। इसके बाद ऑनलाइन काम के लिए पेज खुलेगा। परिवार नकल के लिए 13.80 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। भुगतान UPI, QR स्कैन सहित अन्य ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकेगा। खास बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदक का आधार आधारित EKYC किया जाएगा। यदि EKYC पूरी नहीं है तो पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पहले उसे पूरा करना होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आने का ऐलान किया है।
रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शामिल होंगे। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2020 में गलवान सीमा पर हुए तनाव के बाद ये चीन के राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय पहुंचेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष कानून पर आधारित सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक आंकड़ों का उपयोग मानवता के लिए साझा लक्ष्यों की पूर्ति में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल देश तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और मौसम निगरानी प्रणालियों से मिले आंकड़ों के आधार पर देश के तटीय इलाकों में आने वाले 3 महीने संवेदनशील रहने की संभावना जताई गई है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 3 संभावित चक्रवाती गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से कुछ चक्रवात सामान्य से अधिक ताकतवर हो सकते हैं। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और समुद्र में ऊंची लहरों की स्थिति पैदा हो सकती है। आंकड़ों के अनुसार चक्रवातों की तीव्रता पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हो सकती है। केंद्र सरकार ने भी इसरो की चेतावनी के बाद निगरानी शुरू कर दी है। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग को स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। नशे के खिलाफ जागरूकता और आपातकालीन मदद को लेकर पुलिस ने महत्वपूर्ण संदेश दिया है। यदि कोई बच्चा नशे की चपेट में आ जाए या अचानक उसकी तबीयत गिर जाए तो परिवार को घटना छिपाने के बजाय तुरंत मदद लेनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन सहायता के लिए 112 नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवरडोज या अचानक तबीयत बिगड़ने की स्थिति में 112 पर फोन कर तत्काल सहायता मांगी जा सकती है। पुलिस के अनुसार नशे के खिलाफ लड़ाई में परिवार की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव, नशे की सामग्री या गतिविधियों से जुड़े संकेत नजर आए तो परिवार को सतर्क होना चाहिए। नशे से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए समस्या को छिपाने के बजाय तुरंत चिकित्सा और पुलिस सहायता लेना जरूरी है। सरकार ने विद्यार्थियों के लिए नई वर्दी निर्धारित की है। नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों की वर्दी हरी रंग की थीम पर आधारित होगी। महिला शिक्षकों के लिए हल्के नीले रंग की साड़ी और पुरुष शिक्षकों के लिए ब्लू रंग की ड्रेस निर्धारित की गई। सरकार का उद्देश्य स्कूलों में एक समान पहचान और अनुशासन को बढ़ावा देना है। बताया गया है कि नई यूनिफॉर्म और रंग योजना केवल सौंदर्य से जुड़ी नहीं है बल्कि स्कूलों में एक अलग और मजबूत पहचान स्थापित करने की दिशा में भी कदम है। शिक्षा विभाग की बैठक में स्कूल भवनों की रंग योजना और स्कूलों की एक अलग पहचान स्थापित करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। एक बार फिर मुख्य सुर्खियां। सभी एयरलाइंस के पायलटों के लिए ड्रग टेस्टिंग जरूरी होगी। हिमाचल में बिजली कटौती से पहले मोबाइल पर SMS की सुविधा मिलेगी। परिवार नकल के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने भारत आएंगे। 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय पहुंचाने का लक्ष्य। अक्टूबर से दिसंबर के बीच चक्रवाती गतिविधियों की चेतावनी और नशे या ओवरडोज की आपात स्थिति में 112 पर मदद देने की अपील। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
1: ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
2: अबे चल आजा।
3: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
2: चले,
4: असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो।

0: क्या मैं बदतमीज हूँ?
1: Oh, no.
2: नहीं।
0: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
2: नहीं।
0: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
2: नहीं।
0: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
2: नहीं तो।
0: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
2: अरे नहीं बाबा।
0: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीबी जैसा बनता जा रहा है?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आज 12 सितंबर है और शनिवार का दिन है और श्रोताओं, आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि बाहर बहुत अच्छा मौसम जो है वो देखने में आ रहा है। और आप सभी जानते हैं कि जैसे ही सुबह होती है और हमारी घड़ी पर 9 बज जाते हैं तो कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला शुरू हो जाता है। तो श्रोताओं, आप सभी समझ गए होंगे कि आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में करती हूं स्वागत और आप सभी को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूं श्रोताओं, आप सभी ठीक ठाक होंगे और ज़रूर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ, रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े होंगे। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में रोज़ाना की तरह आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी बातें होती हैं, जानकारियां होती हैं और कुछ एक बातें होती हैं जो हम करते हैं आपके साथ साझा। और श्रोताओं, कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए लेकर आते हैं हम गीतों का भी पिटारा और उस गीतों के पिटारे को हम समय समय पर ज़रूर खोलते हैं और आप तक पहुँचाते हैं प्यारे प्यारे गीत। तो जितने भी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं उनका धन्यवाद और जो नहीं जुड़े हैं हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि हम करते हैं आपका इंतज़ार, आप भी जल्दी से कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रोज़ाना की तरह विचार के साथ और आज का विचार हमें यही कहता है कि संयोग से जीवन मिलता है और सहयोग से जीवन चलता है, इसलिए रिश्तों में मिठास बनाए रखिए। बिल्कुल, रिश्तों में भी मिठास बनाए रखिए और कार्यक्रम में भी मिठास बनाए रखिए। और कार्यक्रम में मिठास तभी बनेगी जब हमारे प्यारे प्यारे श्रोता इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। और साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें 88.4 मेगाहर्ट्ज पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी आप हमें सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ के साथ हमारे साथ जितने भी श्रोता जुड़े हैं उन्हें भी सुषमा की प्यार भरी गुड मॉर्निंग। तो श्रोताओं, बातों का सिलसिला शुरू हो गया है और ये चलेगा 11 बजे तक। तो अब बस देर है गीतों का सिलसिला शुरू करने का। तो चलिए गीतों का सिलसिला भी शुरू करते हैं और लेते हैं कार्यक्रम में पहला गीत। इस दिन को हम लेकर आए हैं आए दिन बहार के इस फिल्म से और इस गीत को आवाज़ों से सजाया है आशा भोसले और लता मंगेशकर ने।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं आज सेकंड सैटरडे है और आज बच्चों को ज़रूर स्कूल में छुट्टी भी होगी और बहुत सारे ऑफिसेज में भी छुट्टी होती है और जब सैटरडे और संडे दो छुट्टियाँ इकट्ठी आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी राहत मिलती है और थोड़ा सा हम सुस्ता लेते हैं क्योंकि रोज़ रूटीन में हम लोग जो है वो रेडी होते हैं, एक टाइम टेबल के हिसाब से हम चलते हैं, लेकिन कभी कभी वो टाइम टेबल हम लोग जो है वो ख़राब कर देते हैं, यानी कि हम अपने हिसाब से टाइम टेबल को चलाते हैं और उसके लिए सैटरडे और संडे हमें मिलता है। तो श्रोताओं आज का दिन आप सभी इन्जॉय कर रहे होंगे और आज ज़रूर आप लोगों ने भी बहुत सारे प्लान्स बनाए होंगे कहीं ना कहीं जाने का, घूमने का। और देखिए मौसम भी आज अच्छा है, धूप खिली हुई है और बारिश जो है वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो श्रोताओं ऐसे में हम यही कहेंगे कि आप छुट्टी को एंजॉय भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम अगर आपके पेंडिंग हैं तो उन्हें भी आप आज कर सकते हैं। तो कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको देते हैं मौसम की जानकारी। धर्मशाला में इस समय की बात करें तो बाहर बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और आज सभी लोग जो हैं इस धूप का फ़ायदा लेने वाले हैं, बहुत से घर के काम करने वाले हैं और बहुत से बाहर के काम भी हमारे रहते हैं जो हमें करने का समय नहीं मिल पाता, तो उसके लिए भी आज समय ठीक है। धर्मशाला की बात करेंगे तो आज के मौसम का जो हाल है तो तापमान जो है वो 13 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। हवा में नमी की बात करेंगे तो 88% हवा में नमी है। और साथ ही श्रोता हम यही कहेंगे कि मौसम का मिजाज जो है वो अब थोड़ा सा ठंडा भी हो रहा है और हल्की फुल्की ठंड का एहसास हमें सुबह शाम हो रहा है। इट मींस कि अब ठंड जो है वो आने वाली है, तो इस ठंड का आप ज़रूर स्वागत कीजिए और अपनी जो अपने आप को भी इससे बचा कर रखने की भी तैयारियां जो हैं वो अब कर लीजिए। तो कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, क्योंकि कुछ ही समय बाद यानी 9:20 पर आपको हमने सुनवाने हैं समाचार भी। तो लीजिए चलते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।

0: समाचार। ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। दो दिवसीय इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश होंगे शामिल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान से अवगत कराने की आवश्यकता पर दिया बल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, स्थानांतरण नीति और कार्यकाल तय किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं। ऊना जिला के किसानों की आय बढ़ाने में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना निभा रही महत्वपूर्ण भूमिका। और प्रदेश के अधिकांश भागों में छाए बादल। मौसम विभाग ने 17 सितंबर तक राज्य के कुछ स्थानों में भारी वर्षा का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिनों तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला। ब्रिक्स सम्मेलन 2026 भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसकी थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में शामिल होंगे। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान से अवगत करवाने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल ने कल नई दिल्ली के बसंत कुंज स्थित श्री पेजावर मठ के दौरे के दौरान ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि ये मठ भारत की आध्यात्मिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने मठों द्वारा सामाजिक समरसता और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सामाजिक सेवा, शिक्षा, आध्यात्मिकता और सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में इन संस्थानों के योगदान की भी प्रशंसा की। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में तकनीकी और सामाजिक बदलाव समाज को निरंतर प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे में युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाना और उनका निश्चित कार्यकाल तय करना बेहद जरूरी है। शिमला में एक बयान में उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षक कार्यकाल तय नहीं होगा, तब तक शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं लाए जा सकते। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षकों की मेरिट आधार नियुक्ति के साथ उनकी तैनाती के साथ तबादलों में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में शिक्षक छात्र अनुपात देश में बेहतर है और औसतन 10 छात्रों में एक शिक्षक है, जबकि लाहौल स्पीति में ये अनुपात 3:1 है। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों और कॉलेजों को समय की जरूरत और रोजगार की मांग के अनुसार तैयार करना होगा।
1: हम अपने शिक्षा को सिर्फ साक्षरता तक सीमित नहीं रख सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कई दृष्टिकोण से परिवर्तन लाने की आवश्यकता। हमने बहुत नियुक्तियाँ की है और जो आपका पीटीआर रेशियो, इसे प्यूपल टीचर रेशियो कहते हैं, वो हाईएस्ट है पूरी कंट्री में 1:10। लेकिन कई ऐसे भी जिले हैं आपके लाहौल स्पीति में जहाँ पर 3 बच्चों के पीछे 1 टीचर है, तो और जो आपकी NEP पॉलिसी बोलती है वो 60 के पीछे 2 टीचर बोलती है, जो मानक भी लगभग यही है। लेकिन मानकों के साथ युक्तिकरण बड़ा महत्वपूर्ण, और निश्चित रूप में पिछले 15 वर्षों में लगभग 400,000 बच्चे आपकी सरकारी स्कूलों में कम हुए हैं, और उसका मुख्य कारण यही है कि समय के अनुसार हम अपनी सोच को, मैं समझता हूँ, परिवर्तन नहीं ला।
0: प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य न्यायिक सेवा के जिला व अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कैडर में बड़ा फेरबदल किया है। कल जारी आदेशों के तहत 15 वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन किए गए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
3: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4th से 6th महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7th से 8th महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9th महीने में।
2: राष्ट्रीय मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कल किन्नौर जिले के छितकुल में विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इनमें 3,50,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले इको पार्क व 2,12,00,000 रुपए की लागत से रिम सरंग से रानी कंडा तक किए जाने वाले वन्य जीव सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास प्रमुख रूप से शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि छितकुल में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए भविष्य में राफ्टिंग शुरू करने और उच्च स्तरीय राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ऊना जिला के किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जुलाई 2015 में शुरू की गई इस केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य कृषि में पानी के उपयोग की दक्षता को बढ़ाना, सिंचाई कवरेज का विस्तार करना और भूजल की बचत करना है। योजना के तहत ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के 28 गांवों में किसानों के लिए 75 करोड़ की लागत से सोआ नदी के किनारे 9 ट्यूब वेलों का निर्माण किया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
4: ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित पीत क्षेत्र के 28 गांवों के किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वरदान के रूप में साबित हो रही है। योजना के अंतर्गत पीत क्षेत्र सिंचाई योजना के द्वितीय चरण के लिए 75 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सोआ नदी के किनारे 9 ट्यूबवेलों का निर्माण किया जा रहा है, जहां से पाइपलाइनों के माध्यम से पानी को खेतों में सिंचाई हेतु पहुंचाया जाएगा। इस योजना का लगभग 75% कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य आगामी वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जल वितरण प्रणाली के जरिए 1,876 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: सीमा सड़क संगठन द्वारा तांदी किलार संसारी तिंदी मार्ग पर कल से सड़क सुधारीकरण के लिए नियंत्रित ब्लास्टिंग का कार्य शुरू कर दिया जा रहा है। जन सुरक्षा के मद्देनजर तिंदी से कडूनाला तक का मार्ग प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को प्रातः 11 बजे से अगले दिन दोपहर 2 बजे तक यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। ब्लास्टिंग के बाद सुरक्षा जांच और मलबा हटाए जाने पर ही बुधवार और शनिवार दोपहर 2 बजे के बाद वाहनों को जाने की अनुमति मिलेगी। प्रशासन ने यात्रियों और चालकों से इस शेड्यूल को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। बीती रात राजधानी शिमला सहित अन्य स्थानों में रुक रुक कर बारिश हुई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में अभी भी 60 सड़कें यातायात के लिए प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 17 सितंबर तक प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश का पूर्वानुमान है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी लिखता है, मंत्रिमंडल का विस्तार टला, सीएम सुक्खू की रिपोर्ट पर निर्णय लेगा हाईकमान। अमर उजाला की सुर्खी है, आयकर अधिकारी पर 5,00,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप, सीबीआई ने शिमला में दर्ज की प्राथमिकी। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, हिमाचल में बदले 15 जज। दैनिक जागरण ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के 230 बैकलॉग पद जॉब ट्रेनी से भरने पर अंतरिम रोक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। 2 दिवसीय इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश होंगे शामिल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान से अवगत करवाने की आवश्यकता पर दिया बल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, स्थानांतरण नीति और कार्यकाल तय किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं। ऊना जिला के किसानों की आय बढ़ाने में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना निभा रही महत्वपूर्ण भूमिका और प्रदेश के अधिकांश भागों में छाए बादल। मौसम विभाग ने 17 सितंबर तक राज्य के कुछ स्थानों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है इस समय 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के बाद और इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, जैसे कि सभी आप जानते हैं कि इसका समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। और आज के कार्यक्रम में भी हम आपके साथ करेंगे बहुत सारी बातें और पहुँचानी हैं अभी आपको जानकारियाँ भी। लेकिन श्रोताओं, पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत और उसके बाद हम अपनी बातों को जारी रखेंगे। मुकद्दर का फैसला, इस फिल्म का गीत श्रोताओं अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, ना कल का पता ना पल का पता। बिल्कुल श्रोताओं, और ये गीत हमें याद दिलाता है कि जीवन में कल क्या होगा इसका किसी को भी पता नहीं है, इसलिए जो समय आज हमारे पास है उसे खुशी से, प्रेम से और अच्छे कर्मों के साथ हमें जीना चाहिए। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता और आने वाला कल हमारे साथ में नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ आज है। अपने आज के बारे में सोचिए, जो पीछे बीत गया उसके बारे में सोचकर अब कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी श्रोताओं, हम पीछे की दुनिया की ओर भागते ही चले जाते हैं कई बार। जैसा कि आजकल आप सभी देख रहे होंगे, अपनी फेसबुक पेज को खोलिए तो बहुत सारे ऐसे मीम्स बन रही हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि 80 के दशक में हम अपने आप को देखें। तो श्रोताओं, ये तो सिर्फ एक फ़ोटो की बात है, अगर हमें सच में उस दशक में जाने का मौका मिले तो शायद वो स्ट्रगल, वो चीज़ें हम ना कर पाएँ। और कहते हैं ना कि जो बीत गया, जो समय बीत गया है उसे हम देखना तो चाहते हैं, अपने आप को उसमें ढालते तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर उस समय में हमें जाना पड़े और वहाँ का जो स्ट्रगल हम देखेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा। आज हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन है, हर चीज़ का जवाब हमारे पास है, हर चीज़ का, हर परेशानी का हल हमारे पास है, लेकिन उस समय वो चीज़ें नहीं थी। खैर श्रोताओं, इस पर बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और आपने हमारे कार्यक्रम में इस पर बहुत ही अच्छे से सुना भी है। और पर ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, देखा देखी में हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा भागते चले जाते हैं। कोई काम एक व्यक्ति शुरू करता है तो हम सोचते हैं कि हम भी ऐसा करें, और उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या नहीं, वो चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि जब हम किसी भी काम को करते हैं, देखा देखी में ही सही, लेकिन पहले हमें ये देखना चाहिए कि उस काम को करने पर हमें या हमारे समाज को या हमारे देश को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो श्रोताओं, ये छोटी सी बात जो है वो कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के माध्यम से हमने की आपके साथ, और अब आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 12 सितंबर का दिन, और हर दिन का अपना कोई एक इतिहास रहता ही है। आज के इतिहास पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे श्रोताओं। 12 सितंबर 1873 में पहला व्यवहारिक टाइपराइटर ग्राहकों को बेचा गया था, और साथ ही आज ही के दिन 1940 में फ्रांस के लास्को गुफाओं में प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की खोज भी की गई थी। साथ ही 1953 में जॉन एफ कैनेडी ने जैकलीन बुबीवर से विवाह किया था। साथ ही श्रोताओं, आज ही के दिन 1992 में मई जेसिमन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी। तो श्रोताओं, ये तो थी थोड़ी सी जानकारी आज के दिन की इतिहास की, और बातों को अब यहीं पर हम ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है मनोरंजन के साथ। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और लता मंगेशकर और विपिन सचदेवा की आवाज़ों में सुनते हैं सनम बेवफा फिल्म का ये गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और इस कार्यक्रम में श्रोताओं, हम आपके साथ बातचीत भी करते हैं और साथ ही आपका मनोरंजन करते हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ, साथ ही आप तक पहुँचाते हैं जानकारियाँ भी। तो श्रोताओं, एक खबर, एक जानकारी जो है वो मेरे हाथ में है और मैं चाहती हूँ आप तक वो पहुँचाऊँ। तो चलिए देखते हैं वो क्या जानकारी है। श्रोताओं, स्मार्ट सिटी धर्मशाला अब सही मायनों में स्मार्ट ऑपरेशंस की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा चुकी है। शहर के चप्पे चप्पे को रोशन करने वाली करीब 7000 सोलर स्ट्रीट लाइटों को अब 65 अलग अलग जगहों से नहीं बल्कि एक हाईटेक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम यानी केंद्रीय नियंत्रण के कंट्रोल किया जाएगा यानी अब सिर्फ एक क्लिक से पूरे शहर की लाइटें एक साथ चालू या बंद की जा सकेंगी। नगर निगम कमिश्नर जफर इकबाल की इस दूरदर्शी पहल ने शहर की लाइटिंग व्यवस्था की पुरानी और मैनुअल प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल रूप दे दिया है। तो श्रोताओं, बहुत अच्छी खबर ये है और अब हमारा जो धर्मशाला है वो एक क्लिक पर ही चमचमा उठेगा। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी जो चीज़ें होती हैं और स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने की कोशिश जो है वो हो रही है। और श्रोताओं, साथ ही हम ये कहेंगे कि अपनी धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाना सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है, उसमें हमारा सहयोग भी होना चाहिए। हमें बहुत सारी सुविधाएँ जो हैं वो मिलती हैं। सबसे मेन बात हम करेंगे कूड़े कचरे की। अगर कूड़े कचरे के लिए हमें आजकल बहुत सारी सुविधाएं जो है वो मिल रही हैं, घर घर जो है कचरा उठाने के लिए, लेने के लिए हमारे भाई या बहन जो भी हैं वो आते हैं और लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम देखते हैं कि हमें इतनी जल्दबाजी होती है कि हम किसी एक थैले में या एक बैग में अपना कूड़ा डाल के चलते चलते यहाँ वहाँ देखते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है और हम नाले में या कहीं पर भी फेंक कर चले जाते हैं। तो श्रोताओं, जब हम यहाँ वहाँ देखते हैं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा, उस समय आप ये सोचिएगा कि आप अपने आप को देख रहे हो या शायद एक कोई ना कोई नज़र आप पर ज़रूर होगी, और कोई हो ना हो लेकिन हमारी अंतरात्मा हमें ज़रूर देखती है और हमारी अंतरात्मा हमें सही है या गलत है ये भी बताती है, लेकिन हम उसकी आवाज़ को भी अनसुना कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए श्रोताओं, क्योंकि अंदर की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ बिल्कुल सही होती है, भगवान की आवाज़ होती है। उसे सुनिए और वही काम कीजिए जो आप सोचते हैं कि ठीक है, और जो काम गलत है उसे बिल्कुल भी मत कीजिए। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, और जानकारी के बाद आपको लिए चलेंगे इस प्यारे से गीत की ओर, जिसे हम लेकर आए हैं रोटी फिल्म से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और इस पहले से गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम में हम कोई ना कोई बात, कोई ना कोई विषय जो है वो लेकर आते रहते हैं। तो श्रोताओं, आज थोड़ी सी बात हम करने वाले हैं मनोरंजन की दुनिया से जुड़ी, और मनोरंजन की दुनिया से जुड़े एक ऐसे बदलाव की जिसे हम पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेज़ी से महसूस कर रहे हैं। आज दर्शकों को सिर्फ काल्पनिक कहानियां ही पसंद नहीं आ रही हैं, इसके साथ साथ रियलिटी बेस्ड फिल्में, यानी कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित और असली लोगों की जो कहानियाँ हैं वो बहुत पसंद आ रही हैं, और ऐसी फिल्में बन भी रही हैं जिन्हें देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में जा रहे हैं। श्रोताओं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अच्छी बात है, हमें सच्चाई जो है वो सामने आती है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हम तक नहीं पहुँच पाती हैं, या हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, और सत्य घटनाओं पर आधारित जो फिल्में हैं उनका जो क्रेज़ है वो आजकल बढ़ रहा है, चाहे वो फिल्म बनाने की बात हो, चाहे उन्हें देखने की बात क्यों ना हो। और श्रोताओं, ऐसे में देखने में आया है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों को भी थिएटर पर लेकर जाते हैं और उन्हें वो मूवी दिखाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो भी सोचते हैं कि हम भी थिएटर में जाएँ, फ़िल्म देखें, लेकिन जो आजकल की फिल्में आती हैं वो उन्हें पसंद नहीं आती हैं। उन्हें सत्य कहानियाँ, सत्यों पर जो आधारित कहानियाँ होती हैं, फिल्में होती हैं, चाहे वो किसी खिलाड़ी के संघर्ष की बात क्यों ना हो, किसी वैज्ञानिक की कहानी क्यों ना हो, या किसी आध्यात्मिक गुरु की ही कहानी क्यों ना हो, ऐसे में उन्हें जब हम लेकर जाते हैं, और ऐसा देखने में भी आया है और अच्छा लगता है जब हम अपने बड़े बुज़ुर्गों को भी थिएटर पर लेकर जाते हैं किसी बहाने से, और उनकी पसंद की कोई फिल्म आ जाती है तो वो देखते हैं। तो श्रोताओं, आजकल ये जो क्रेज़ है बहुत बढ़ रहा है, और अभी फ़िलहाल में ही ऐसी फिल्में बहुत सारी आपने भी देखी होंगी, और एक फिल्म ऐसी ही आई है हनुमान अंश, तो उसे देखने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, अपने घर के बड़ों को लेकर भी जा रहे हैं। और हम इस फिल्म की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि अपनी फैमिली को समय देना बहुत ज़रूरी है। अपनी फैमिली मेंबर्स, यानी कि अगर आपके घर पे आपकी माता है, पिता है, अगर उन्हें भी ऐसी फिल्में देखने का शौक़ है तो आप ले जा सकते हैं। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ेंगे, और हनुमान अंश की हमने बात की है, इसी फिल्म का एक बहुत ही अच्छा गीत अब आप तक पहुंचाएंगे साधु तिवारी की आवाज़ में। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और आप सभी समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि आजकल जो है लोगों का इंटरेस्ट जो है वो रियलिटी बेस्ड फिल्मों की ओर बढ़ता जा रहा है। तो श्रोताओं, लेकिन आखिर असली घटनाओं पर आधारित फिल्मों में ऐसा क्या है जो दर्शकों को इतना आकर्षित करता है, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह है कनेक्शन। जब हमें पता होता है कि पर्दे पर दिखाई जा रही कहानी किसी कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक जीवन से प्रेरित है तो हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है और हम सोचते हैं कि वाकई में ऐसा हुआ था, उस व्यक्ति ने इतनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना कैसे किया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे दिमाग में आते हैं और हम उस फिल्म को देखकर वो जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, उनका आंसर लेने की कोशिश करते हैं। श्रोताओं, रियलिटी बेस्ड फिल्मों की एक खासियत ये भी है कि इनमें हमें सुपर हीरो कम और संघर्ष करते हुए इंसान ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके सामने परेशानियां थी, जिसने असफलता देखी, जिसने कभी हार मानने का मन बनाया होगा लेकिन फिर उसने दोबारा कोशिश की, और शायद यही बात हमें सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है क्योंकि काल्पनिक कहानियों का नायक हमें अच्छा लग सकता है लेकिन वास्तविक जीवन से जुड़ा व्यक्ति हमें ये विश्वास भी दिलाता है कि अगर उसने मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम भी अपनी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। लेकिन श्रोताओं, यहाँ पर एक बात समझना भी बहुत ज़रूरी है कि रियलिटी बेस्ड फिल्म का मतलब ये नहीं कि फिल्म में दिखाई गई हर घटना बिल्कुल उसी तरह से हुई होगी। फिल्म बनाने के लिए कहानी को रोचक बनाने, घटनाओं को क्रम में रखने या फिर कुछ दृश्यों को नाटकीय बनाने के लिए बदलाव भी किए जा सकते हैं। इसलिए किसी फिल्म को देखने के बाद उसकी कहानी को पूरी तरह से ऐतिहासिक या तथ्यात्मक मान लेने के बजाय अगर विषय गंभीर हो तो उसके बारे में अलग से विश्वसनीय जानकारी लेना भी ज़रूरी है। तो श्रोताओं, अपनी बातों को अब फिर से हम यहाँ रोकेंगे और आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद आपको ज़रूर सुनवाएंगे गीत। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। और ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि आपको सुनवाएंगे गीत, तो लीजिए सुनिए ऊंचे लोग फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आपने सुना ये गीत। श्रोताओं, ऐसे ही गीत हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आते होंगे। कार्यक्रम में बातों के साथ साथ जानकारियों का जो एक सिलसिला है वो भी हमारा रुकना नहीं चाहिए और अब हम कार्यक्रम में आप तक पहुँचाने जा रहे हैं जानकारी। नगरोटा बगुआ में पशुओं में रेबीज के मामले लगातार सामने आने से लोगों में दहशत का माहौल है। करीब एक माह पहले एक कुत्ते के रेबीज संक्रमित पाए जाने से शुरू हुआ ये सिलसिला अब पालतू और आवारा पशुओं तक पहुंच चुका है। अब तक करीब 1.5 दर्जन पशु इसकी चपेट में आ चुके हैं। आए दिन श्रोताओं, किसी न किसी पशु में लक्षण सामने आने से प्रशासन और पशुपालक विभाग की सक्रियता बढ़ रही है। संक्रमित पशु एक दूसरे के लिए खतरा बने हुए हैं, वहीं इनके संपर्क में आने वाले लोगों की सुरक्षा भी चिंता का विषय है। शहर में कई बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं आवारा व संक्रमित पशुओं की चपेट में आकर उपचार करवाने को मजबूर हुए हैं। प्रशासन की ओर से मुनादी करवाने के साथ विभाग का वैक्सीनेशन अभियान भी जारी है। तो श्रोताओं, इस खबर को आप तक पहुंचाने का मकसद यही है कि आप लोग अपना और अपने पशुओं का ख़ास ख्याल रखिए और जहाँ भी आपको लगता है कि कोई ऐसा पशु है तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। और पशुओं के लिए हम यही कहेंगे कि अपने पशुओं को अगर आप अपने घर पर ही गौशाला में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, जब तक कि ये सब चीज़ें जो हैं वो ठीक ना हो जाएं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारी के बाद अब आगे बढ़ेंगे और फिर से आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर, जिसे हम लेकर आए हैं कर्ज फिल्म से। श्रोताओं, ये गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और थोड़ी सी बात करेंगे आजकल की तकनीक पर। आज भारत में तकनीक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। डिजिटल भुगतान से लेकर ऑनलाइन पढ़ाई, घर से काम, ऑनलाइन खरीदारी और डिजिटल सेवाओं तक कई चीज़ें पहले की तुलना में आसान और तेज हुई हैं। हमारे गांव और छोटे शहरों में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। युवा नई तकनीक सीख रहे हैं, नए व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन श्रोताओं, बदलाव की कहानी का दूसरा पहलू भी है। हमारे पास समय बचाने वाली तकनीक तो आ गई है, लेकिन क्या हमारे पास एक दूसरे के लिए समय बचा है? हमारे पास दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन क्या हम अपने आसपास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं? हमारे पास संपर्क के लिए मोबाइल है, लेकिन क्या बातचीत से पहले जैसी बातचीत अब रह गई है या नहीं? यही सवाल आज हमें अपने आप से पूछना है। श्रोताओं, हमारी जीवन शैली का एक बड़ा बदलाव हमारे खान पान में भी दिखाई देता है। पहले घर का बना खाना, मौसम के अनुसार मिलने वाली चीज़ें और स्थानीय भोजन हमारी दिनचर्या का हिस्सा होते थे। अब व्यस्त जीवन में तुरंत मिलने वाला भोजन और बाहर का खाना भी हमारी आदतों में शामिल हो गया है। घर का खाना अब कहीं ना कहीं हमें स्वाद नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, और जब भी हमें कुछ ऐसा खाना हो तो हम अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और फटाफट कुछ भी मंगा लेते हैं। सुविधा श्रोताओं बुरी नहीं है, आधुनिकता भी बुरी नहीं है, लेकिन हमें यह ज़रूर तय करना होगा कि सुविधा के लिए हम अपनी अच्छी आदतों को पूरी तरह पीछे ना छोड़ दें। तो बिल्कुल श्रोताओं, इस पर हमें सोच विचार करना चाहिए, और सच में सोचने वाली बात भी है। तो कार्यक्रम में अब आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, और गीत संगीत की इस आज के इस दिन को थोड़ा सा लगाएंगे पंजाबी तड़का, यानी कि एक पंजाबी गीत आप तक पहुंचाने वाले हैं। और इस गीत में बहुत कुछ ऐसा कहा गया है जो सच में सच्चाई है, और सुनने वाला ये गीत है। तो ज़रूर सुनिएगा इस प्यारे से गीत को गुरदास मान और दिलजीत दोसांझ की आवाज़ों में।

के बनूं दुनिया दा। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और इस गीत को सुनकर सच में कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि की बनूं दुनिया दा, इस दुनिया का क्या बनेगा। क्योंकि आए दिन हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और देख भी रहे हैं, जिसे देख कर सुनकर सच में कई बार सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया का क्या होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों में इंसानियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। खैर, बात करेंगे इस गीत की। गुरदास मान जी का ये जो गीत हमें उस पुराने समय की याद दिलाता है, जब जिंदगी में सादगी थी और पहनावे में भी एक अलग ही शान हुआ करती थी। उस दौर में लोग कानों में बालियाँ पहनते थे, पारंपरिक कपड़े पहनते थे और अपने पहनावे को अपनी संस्कृति और पहचान से जोड़कर देखते थे। उस समय फैशन का मतलब सिर्फ नया दिखना नहीं था, बल्कि अपनी परंपरा को खूबसूरती के साथ निभाना भी था। कपड़ों में सादगी थी, लेकिन व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण दिखाई देता था। आज समय बदल गया है, फैशन बदल गया है, पहनावे के तरीके बदल गए और जीवन की रफ्तार भी बहुत तेज़ हो गई है। श्रोताओं, यही इस गीत की खासियत है कि ये हमें सिर्फ पुराने पहनावे की याद नहीं दिलाता, बल्कि उस दौर की जीवन शैली और सादगी की भी याद दिलाता है। गीत सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे हम अपने पुराने समय की गलियों में लौट गए हों, जहाँ छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी और अपनापन हुआ करता था। शायद इसलिए पुराने गीत हमें इतने अपने से लगते हैं। वे हमें केवल बीते हुए समय की याद नहीं दिलाते, बल्कि हमारी जड़ों और हमारी संस्कृति से भी जोड़ते हैं। तो श्रोताओं, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के साथ जुड़े रहिए, उसे कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब हम आगे बढ़ेंगे और गीतों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और लेंगे एक और प्यारा सा गीत। हेमलता की आवाज़ में श्रोताओं सुनिए इस प्यारे से गीत को।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और कार्यक्रम का समय जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का रहता है। श्रोताओं, अब थोड़ी सी बात हम अपने स्वास्थ्य को लेकर भी करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वास्थ्य अगर हमारा सही हो, ठीक हो, तभी हमें ज़िंदगी का मज़ा आता है और ज़िंदगी को हम इंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन श्रोताओं, आजकल खुद से इलाज करने की एक आदत जो है हमारे लिए एक कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अगर हम इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टरों की माने तो ये आदत फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। डॉक्टर जो है वो चेतावनी दे रहे हैं कि इन दवाइयों को बिना ज़रूरत के बार बार खाने से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। और श्रोताओं, अगर आप भी बार बार एंटीबायोटिक लेने की आदत डाल चुके हैं तो आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं इससे हमें नुकसान हो सकता है। छोटी सी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम घर पर पड़ी मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ दवाइयों के जो नाम हैं हमें टिप्स पर याद रहते हैं और हमें लगता है कि इससे फ़ायदा हुआ है तो हम इसी को ले लेते हैं। लेकिन श्रोताओं, एंटीबायोटिक हमारी इम्यूनिटी को कैसे नुकसान पहुंचाती है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने पेट के बारे में समझना होगा। डॉक्टरों का कहना है कि हमारे शरीर का लगभग 70% इम्यून जो सिस्टम है वो पेट में होता है। इसे पेट में मौजूद करोड़ों गुड बैक्टीरियाज जो हैं वो चलाते हैं, जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। जब आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये वो जो एंटीबायोटिक है वो एक मिसाइल की तरह काम करती है। ये बीमारी फैलाने वाले बैड बैक्टीरिया को तो मारती ही है, लेकिन साथ ही हमारे पेट में जो गुड और मददगार बैक्टीरिया हैं उन्हें भी पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। इसलिए श्रोताओं, बार बार अगर बीमारियों की चपेट में आप आ रहे हैं और अपने आप कोई दवाई ले रहे हैं तो उसे लेना बंद कीजिए, और ज़रूर डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही उनकी सलाह पर जो आपको मेडिसिन बताई जाती है उसका इस्तेमाल कीजिए। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में स्वास्थ्य पर अब थोड़ी सी बात हमने कर ली है श्रोताओं, और फिर से हम चलेंगे मनोरंजन की और हम भी सुनेंगे, साथ ही आपको भी सुनवाएंगे इस प्यारे से गीत को। तो लीजिए, सुनिए इस गीत को कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में, जिसे हम लेकर आए हैं अर्पण फिल्म से। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में सुना आपने ये गीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हमारे पास समय थोड़ा ही है, लेकिन चलते चलते आपको सुनवा के जाएंगे हम एक दो और प्यारे प्यारे गीत। तो चलिए लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है जॉनी मेरा नाम फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ में इस गीत को आप तक पहुँचा रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के माध्यम से।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत। तो श्रोताओं, हमारे स्टूडियो में लगी घड़ी जो है वो टिक टिक कर कर अब हमें इशारा कर रही है कि इस कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है। तो श्रोताओं, आज हमने आपके साथ बात की रियलिटी बेस्ड फिल्मों का बढ़ता क्रेज़ जो है उस पर, और साथ ही आप तक पहुँचाई जानकारियाँ भी। तो श्रोताओं, फिल्मों की हमने बात की है, कहानी चाहे पर्दे पर दिखाई जाए या जिंदगी में लिखी जाए, असली जीत उसी की होती है जो मुश्किल अध्याय के बाद भी अगला पन्ना पलटने की हिम्मत रखता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव श्रोताओं हमेशा आते हैं और आते भी रहेंगे, लेकिन उन उतार चढ़ाव को देखकर हमें घबराना नहीं है, बल्कि समय के साथ आगे बढ़ना है। जिस तरह से हमारी ये जो घड़ी है वो आगे बढ़ती ही जाती है, ये कभी रुकती नहीं है, और अगर रुक जाए तो इसका मतलब है कि इसके सेल ख़त्म हो गए हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम रुक जाएं तो इट मींस कि हमारे भी सेल ख़त्म होने वाले हैं। तो उसे जल्दी से नए सेल यानी कि सकारात्मक सोच के साथ जोड़िए और पॉजिटिव रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब ज़्यादा समय हमारे पास नहीं रहा है कि हम आपके साथ बात करें, तो चलते चलते अब आपको सुनवाएंगे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसे हमने लिया है पड़ोसन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। और इस गीत के साथ अब आपसे मुझे लेनी होगी इजाज़त। फिर किसी दिन किसी और कार्यक्रम में एक नई सोच के साथ, नए विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की। आपका दिन शुभ हो, खुशियों भरा हो। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: भाई
1: क्या है?
0: क्या ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यही हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
1: ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
2: अरे चल आजा।
3: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया, मेरा गेम ओवर।
4: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

की धूम। उसे ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति।

गणपति के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीवी जैसा बनता जा रहा है?

मेरी प्यारी दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: क्या है?
1: क्या ये?
0: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
0: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए।

0: शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम।
1: उस ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति।

पार्वती के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीवी जैसा बनता जा रहा है?

0: नमस्कार दोस्तों, 91.5 ओमेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो विंचन धर्मशाला। और एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ दोस्तों एक नई बातचीत के साथ। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुनते हैं हर हफ्ते मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर, जिसमें कि हम जानते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारियाँ, जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहें और हो सके तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अगर चेंज करने की जरूरत है तो वो भी हम जरूर करें, क्योंकि उसका सीधा सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी मानसिक हेल्थ पे पड़ता है। तो आप सभी इस प्यारी से कार्यक्रम में और इस बातचीत में जुड़ते हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ,
0: सभी के लिए मतलब कि खास जानकारियों के साथ जुड़ते हैं और बहुत ही खास मोमेंट रहता है ये हम सभी के लिए, आपके लिए भी मेरे लिए भी, कि मैम अपना इतना कीमती समय जो है ना वो हमारे लिए निकाल कर यहाँ तक आते हैं, तो बहुत खास बात है। लेकिन हमें भी इस अहमियत को समझना है और इस समय की वैल्यू को समझना है। तो स्वागत है मैम आपका एक बार फिर से इस प्यारे से कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं मैम आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे?
0: बहुत अच्छे हैं। रूटीन कैसी चल रही है?
1: बहुत क्योटिक बट गुड
0: जी। तो मैम मैं थोड़ा सा पहले आपसे आपकी ना डेली रूटीन के बारे में जानने जा रही हूँ, क्योंकि जो आप क्लिनिक में अपने सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स के साथ जो है मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को फेस करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दोस्तों को उस शेड्यूल उस रूटीन के बारे में बताइए।
1: देखिए मॉर्निंग में भी कुछ हमारे एक्चुअली ऑनलाइन प्रैक्टिस भी है और हमारी ऑफलाइन भी है, तो बेसिकली कुछ जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं वो मॉर्निंग में भी हो जाते हैं अर्ली मॉर्निंग के दौरान, और क्लिनिक स्टार्ट होता है अराउंड 12, सो फ्रॉम 12 टू 6 पीएम आई एम एट क्लिनिक। अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, कुछ सेशंस बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं तो कुछ सेशंस काफी लाइट भी रहते हैं। हम हर एक क्लाइंट के साथ एक अलग प्रकार के साइकोलॉजिस्ट का रोल अदा करते हैं
0: जी,
1: किसी को बहुत हंसाते हैं तो किसी को बहुत रुलाते हैं।
0: देख लीजिए दोस्तों कि कितना मुश्किल ये दौर है कि किसी को हंसाना है तो किसी को रुलाना भी है जी,
1: क्योंकि हमारे सारे भाव महत्वपूर्ण है रुचिका
0: जी।
1: तो कई बार ना हम सोसाइटी में रहते रहते हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि जैसे कि हमारे एक इमोशन तो बहुत अच्छा और बाकी इमोशन तो बहुत खराब है, तो हम खुद ही अपने ही साथ अपनी भावनाओं के साथ बहुत ज्यादा मतभेद उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। एंड बिलीव मी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब जनता में आई थिंक मैक्सिमम लोग इस प्रकार के ही सोच रखते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं, सिर्फ उनकी हेल्थ पर ही नहीं बट उनकी रिलेशनशिप्स में भी। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों के अनुसार उनको वो ऑफर किया जाता है थेरेपी सेशंस में, जो उनको हील करने में, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने में उनको सहायता देगा। बस ऐसे करते करते दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है, घर जाते हैं तो तब भी कुछ ऑनलाइन सेशंस होते हैं तो बस रात के 9 बजे तक हमारा टाइम सारा सेशंस में जाता है
0: जी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य की, तो जैसे आप अलग अलग तरह के पेशेंट्स के साथ मिलते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ मिलते हैं, तो खुद के मानसिक स्वास्थ्य को आप कैसे उस समय, क्योंकि अब आपने जैसे कहा कि कुछ क्लाइंट्स को हंसाना पड़ता है तो कुछ को रुलाना भी पड़ता है, उस तरह से आप उन्हें हैंडल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कई बार होता है दूसरों को देख के अपना मानसिक संतुलन जो है वो कहीं खो बैठते हैं, तो उसमें आप किस तरह से काम करते हैं?
1: देखिए जब हम लोगों की ट्रेनिंग होती है ना, उस दौरान ये सीखना, समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें कब सामने वाले के शूज में जाना है और कब अपने शूज में वापस आना है
0: जी।
1: एक होता है कि अगर आप अपने शूज में ही बैठ के सामने वाले व्यक्ति को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे तो आप उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो चोट है, आप उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी जिस तरीके से भी अपने सेशन के फ्लो को एक रुख देना चाहेंगे वो उनके लिए उतना इफेक्टिव या एफिशियंट साबित नहीं होगा, इसलिए अपने जूते उतारना जरूरी है। जब हम सामने वाले के शूज में जाते हैं तब हम उनके पेन को, उनके दर्द को, उनके अकेलेपन को महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि वो कौन सी कड़ियां हैं जो अभी भी बंद हैं, जिनको अनलॉक करना जरूरी है, वो कौन सी पीड़ाएं हैं जिनसे सबसे ज्यादा कष्ट पहुंच रहा है। तो कुछ इस प्रकार से जब आप उनकी परेशानियों का आभास ले पाते हैं तब अपने शूज में वापस दोबारा आना पड़ता है और उनके दुख को थोड़े डिस्टेंस के साथ देखना पड़ता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जैसे डिटैचमेंट, आपने सुना होगा वर्ड, है ना
0: जी।
1: ये है वो वैराग्य जिसको आपको प्रैक्टिस करना होता है। सो दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स मी अलॉट रुचिका
0: जी। तो कई बार ऐसा भी हुआ है आपके साथ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहता है जब हम किसी के साथ कोई केस डिस्कस कर रहे हैं या किसी की काउंसलिंग कुछ लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन हमें उस पर कोई भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं नजर आ रही है, कोई रिजल्ट्स जो है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो गुस्सा आ जाता है कई बार। तो ऐसा भी आपके साथ कभी हुआ है?
1: गुस्सा तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसके पीछे भी तो कारण ही होगा
0: होंगे जी,
1: है ना
0: जी।
1: और हर चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका अपना कोई सिग्निफिकेंस होता है
0: जी।
1: सो अगर कोई व्यक्ति उसी जगह पर रुका हुआ है और वो उस जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसका अपना एक पर्पज है
0: जी,
1: और वो पर्पज जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक उसको वहां उस परिस्थिति में रह के जो लेसन्स लेने हैं, जो लेसन्स को इम्प्लीमेंट करना है, जब तक वो नहीं करेगा तब तक वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा
0: जी।
1: जिसके कारणवश ये सोचना कि अब तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है या ये तो डिसअपॉइंटिंग है या गुस्सा आ रहा है, ये तो थोड़ी बेवकूफाना वाली बात हो जाएगी
0: जी बिल्कुल। तो मैं इस बात पे आपको इसलिए लेकर आ रही थी क्योंकि आज हमारी जो ये बातचीत रहने वाली है वो इसी से जुड़ी है। और कई बार क्या हम आज के समय में बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहे हैं अपने आसपास, खास करके बच्चों को या युवाओं की हम बात करें तो बहुत जल्दी जो है हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी भी बात को एकदम से रिएक्ट करना, एकदम से उस पर रिस्पॉन्स दे देना और उस वजह से जो है सिचुएशंस बनने के बजाय जो वो बिगड़ जाती है
1: जी।
0: तो सबसे पहले हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ये गुस्सा होता क्या है और ये किस तरह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और हम अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ेंगे।

0: तो दोस्तों इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे बहुत ही प्यारे से और स्वीट से मेहमान। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी इस प्यारी सी बातचीत, प्यारे से कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि गुस्से की वजह आखिर क्या हो सकती है, या गुस्सा जब भी हमें आता है तो कोई ना कोई रीजंस जो है वो जरूर रहते हैं, तो वही आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये गुस्सा होता क्या है और कैसे हम इसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इस पे काम कर सकते हैं। मेन हम यही बोल सकते हैं कि इस पे किस तरह से काम कर सकते हैं।
1: सुरुचिका, गुस्सा सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इमोशन है
0: जी।
1: हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमारा दुख, हमारा सुख, हम सरप्राइज हो जाते हैं, हम शॉक हो जाते हैं, हमें गिल्ट होता है, हमें एक प्रकार से कभी हमें करुणा में महसूस होता है, तो कभी हमें ईर्ष्या होती है। तो ये सारे ही इमोशंस जो हैं ये बहुत ही क्लियर है अपने आप में, लेकिन गुस्सा एक ऐसा इमोशन है अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा देखा जाता है, सोसाइटी में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है, लेकिन सबसे ये सब होने के बावजूद ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इमोशन है जिसके कारणवश बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं पर अपने रिश्तों में भी, और रिश्तों से बाकी के जीवन में भी परेशानियां लाता है
0: जी।
1: गुस्से को ऐसा मानिए कि ये एक प्रकार का मुखौटा है, ये एक ऐसा मुखौटा है जो सामने वाले को कुछ सर्टेन चीजें महसूस कराना चाहता है, जैसे कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं डोमिनेट कर सकता हूं, क्योंकि हमारी आवाज ऊंची हो जाती है जब हम गुस्सा करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारे अंदर एक प्रकार की पावर महसूस होती है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं पावरफुल हूं। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट एंगर वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू अदर पीपल इन आर सराउंडिंग, कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं इस एनवायरमेंट को, मैं जो कह रहा हूं वैसा करो। अब ये है मुखौटा, ये है बाहर। हमारे भीतर या समझिए कि प्रकृति में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो बैलेंस के आधार पे चलती है। अब इसी प्रकार से हमारे जो भावनाएं हैं वो भी बैलेंस को ही रीच आउट करती है। अब अगर हमारे बाहर, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर में ये गुस्सा इस प्रकार से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग, इट मीन्स हमारे बीनीथ, एज इन इस मास के बीनीथ या हमारे भीतर कुछ ऐसा है जहां पे व्यक्ति को लैक ऑफ कंट्रोल महसूस हो रहा है, जहां पर व्यक्ति को पावरलेस महसूस हो रहा है, जहां पर व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, वो हेल्पलेस महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि अब तो सब कुछ गया। अब आप समझ रहे हैं कि डेफिनेटली एक्सटर्नल जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ व्हाट्स इनसाइड ऑफ अस। तो गुस्सा सिर्फ एक मास्क है, उसके भीतर ये सारे भावनाएं, ये कहां से आ रहे हैं, हेल्पलेसनेस कहां से आएगी, या एक प्रकार से पावरलेसनेस, या कुछ कंट्रोल नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया, ये भावनाएं कहां से आएंगी? ये आएंगी डिसअपॉइंटमेंट से, ये आएंगी हर्ट से, ये आएंगी फियर से। तो जब जब इंसान फियरफुल स्टेट में होगा वो अपने फियर से फाइट करने के लिए गुस्से में आ सकता। आपने देखा होगा जब जानवर डर जाता है, उनको लगता है कि मुझ पर अटैक किया जा रहा है, तो वो अपने डिफेंस में आप पर अटैक कर देते।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि गुस्सा।
0: एग्जाम्पल के लिए हम सांप को ले सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन पे अटैक करने वाले, इसलिए वो
1: अटैक
0: करते हैं।
1: डेफिनेटली, तो वो एग्रेसिव बिहेवियर, वो वायलेंट बिहेवियर, वो हार्मफुल बिहेवियर के पीछे का क्या कारण है? फियर। सिमिलरली आप देखेंगे हर्ट, लेट्स से एक कपल है, चीट कर दिया, बहुत हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ।

0: कि व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने सामान तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, रिश्ता तो तोड़ा ही
1: जी.
0: तो दैट फॉर्म ऑफ एंगर इज अगेन इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, फ्रॉम हर्ट. अब इसी प्रकार से, अब लेट्स से पेरेंट एंड चाइल्ड है, बच्चे के मार्क्स कम आए, पेरेंट गॉट डिसअपॉइंटेड, पेरेंट्स क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे.
1: गुस्सा
0: तो एज मास्क एक जैसा ही है, पर गुस्से उस मास्क के पीछे का जो कारण है वो अलग अलग
1: कुछ भी हो सकता है.
0: तो जब आपने पूछा ना कि गुस्सा क्या है, तो गुस्सा तो एक बहरूपिया है
1: जी.
0: आपको उस बहरूपिये के पीछे छुपे हुए भावनाओं को समझना है और उनको एक्सप्रेस करना है. जब ये कर पाता है व्यक्ति, तब वो अपने आप में बहुत सेल्फ अवेयर हो जाता है. उसे पता होता है कि उसको एग्जैक्टली किस क्षण पर क्या चाहिए, उसे क्या बुरा लगा है, उसे क्या ठेस पहुंची है, वो अपनी बात को किस प्रकार से सामने खूबसूरती से, सरलता से रख सकता है. कमिंग टू योर थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल इट. पहली चीज तो ये कि हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे. ये बहुत ही अचंभे की बात है कि कैसे हमें लगता है जैसे हमें हर चीज को कंट्रोल करना है
1: जी.
0: जबकि प्रकृति में कुछ भी कंट्रोल होने के लिए बना ही नहीं. प्रकृति में हर चीज फ्लोइंग स्टेट में है. आप नदी को देख लीजिए, ओपन है
1: बिल्कुल.
0: समंदर को देख लीजिए, ओपन है. आकाश को देख लीजिए, बादलों को देख लीजिए, ओपन है. हवा को देख लीजिए, आप पकड़ के दिखाएं उसे. तो स्वच्छंद स्वतंत्रता प्रकृति का अपना आचरण है और हम प्रकृति से भिन्न नहीं, हमारी भावनाएं प्रकृति से भिन्न नहीं, ये सब एक है. इसलिए हमें ये समझना है, हमें अपने पर्सपेक्टिव में, अपने नजरिए में इस बदलाव को लाना है कि हमारी जो भावनाएं हैं हमें उन्हें अंडरस्टैंड करके उनको फ्लोइंग स्टेट में रखना है. हाँ, उनका ख्याल रखना जरूरी है वरना वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन कंट्रोल करने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है.
1: लेकिन अक्सर कहा जाता है ना कि जब भी कोई बच्चा ही गुस्सा कर दे तो पेरेंट्स हो या फिर हम जो भी देख रहे होते हैं वो तो यही बोलते हैं, भाई गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो. अक्सर यही बात
0: आपको पता है रुचिका, हमें कंट्रोल करने का भाव कहाँ से आता है? जब हमें लगता है कि ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है, जब हमें लगता है कि ये तो इतना अनसर्टेन है दैट वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, जब हमें वो चीज समझ में नहीं आती, तब हम सोचते हैं कि इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए क्योंकि आगे क्या होगा पता नहीं और हम डर जाएंगे. एनीथिंग दैट इज अनसर्टेन विल लीड अस टू फील फियरफुल एंड फियर विल आस्क अस टू कंट्रोल एंड दैट विल लीड अस टू एंगर. तो ऐसा मानिए कि बच्चे का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अगर पेरेंट को गुस्सा ही करना पड़ रहा है
1: जी,
0: तो ये बहुत दुख की बात है और इस बात में कोई सेंस नहीं.
1: बिल्कुल सेंसलेस. जी, तो दोस्तों बहुत ही ये गंभीर सी बात और ये शब्द अक्सर हम सभी बोलते हैं. नॉर्मल सी बात है ये, क्योंकि अक्सर हम यही बोलते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, गुस्सा आ रहा है तो उसे पहले दांतों से दबाया जाए, फिर खुद को वो किया जाए. मतलब कि कुछ भी लोग क्या करते हैं, बच्चे खास करके कोई दीवार से सर मार रहे हैं या पंच कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी तरह से, अगर हम किसी और भी नहीं उतार सकते तो ऐसी चीजों से हम गुस्से को कंट्रोल करने की जो हम अक्सर कहते हैं तो वही चीज हम करते हैं. तो अभी अभी आप सभी ने जाना दोस्तों कि गुस्से को कंट्रोल जो है वो हम नहीं कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं ना. तो मे बी इसके बारे में हम और भी जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि ये बहुत खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मन संवाद के माध्यम से. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं.

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और बहुत ही खास ये बातचीत कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर से आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियाशी को।
0: जी दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अपनी बातचीत में आगे। और गुस्से की बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन आज आप जान रहे हैं कि असल में गुस्सा क्या होता है और किस तरह से उसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो मैम, अभी हमने जाना कि गुस्सा क्या होता है और ये भी जाना कि गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम मैनेज कर सकते हैं, तो किस किस तरह से मैनेज कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, देखिए, जितना हम लोग गुस्से को अंडरस्टैंड करते हैं उतना ही ज्यादा गुस्सा हमारे लिए सरल होता जाता है और वो हमारे लिए उस पाथ ऑफ एक्सप्रेशन को भी और सरल बना देता है। देखिए, आप ऐसे मानिए कि गुस्सा एक छोटा सा बच्चा है जिसको अभी तक किसी ने ध्यान से समझा ही नहीं
0: जी,
1: किसी ने उसको गौर से सुना ही नहीं, उसकी नीड्स क्या हैं उनको फुलफिल किया ही नहीं। तो अगर एक ऐसा बच्चा हो जिसकी नीड्स निग्लेक्टेड है, जो अनसीन है, अनहर्ड है, सप्रेस्ड है, तो उसे कैसा महसूस होगा, है ना? खराब महसूस होगा। और वो अपनी तरफ से फिर पूरा प्रयास करेगा ये बताने के लिए कि देखो मैं हूं, आप मुझे इतना निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी एग्जिस्टेंस आपके लिए मायने ही ना रखे, आप मुझे कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, आप मुझे पसंद ना करें या पसंद करें वो एक अलग बात है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। और उस चीज को आप तक कन्वे करने के लिए आपका ही गुस्सा आपके थ्रू, आपके माध्यम से, आपके व्यवहार में धीरे धीरे ऐसे उतरने लगेगा कि आपका जो एक सेंस ऑफ जजमेंट होता है वो बहुत पुअर होता चला जाएगा। सो देन योर एंगर विल चूज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ डिस्ट्रक्टिव वे। इसीलिए आपने देखा होगा सोसाइटी में आजकल कितने ज्यादा डिस्ट्रक्शन वाले केसेस आ रहे हैं, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर फिजिकल अब्यूज इस कदर किया जाता है जिसका कोई मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। दैट्स कम्प्लीटली अनइमेजिनेबल। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपने ही गुस्से को इतना दबाया है। अब वो बोल रहा है आपसे, चीख चीख के बोल रहा है कि तुम्हें मुझे देखना पड़ेगा, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, और तुम मुझसे दूर भागोगे तो मैं तुम्हारे व्यवहार के थ्रू तुम्हारे रिश्तों में ऐसा पॉइजन स्प्रेड करूंगा कि तुमको तब तो मुझे देखना ही पड़ेगा, और अगर तुम तब भी देखोगे तो कोई बात नहीं, बाकी लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। So it becomes so observable and so measurable that how anger is impacting someone's life. तो अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की।
0: जी,
1: देखिए, एक्सप्रेस करने के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, जैसे कि नदी है, नदी फ्लो करेगी, अगर आप नदी पर बांध लगा देंगे तो क्या होगा, एक समय के बाद
0: वो तो फिर
1: वो बांध तोड़ के निकलेगी
0: जाएंगी।
1: यस, और जब वो बांध तोड़ के निकलेगी तब हर जगह डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसी चीज को बचाने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि हम इस बात को समझ सकें कि हमारे नदी का प्रवाह कैसा है, हमारे नदी का स्वभाव कैसा है, उसकी नीड्स क्या है। अब किसी का प्रवाह ज्यादा तीव्र हो तो उसकी नीड्स अलग प्रकार की होंगी, तब हमें प्रोबेबली मल्टीपल चैनल्स बनाने पड़ेंगे जहां पे उसकी तीव्रता को थोड़ा कम किया जा सके और उसके फ्लो को मेंटेन करते हुए, मैनेज करते हुए easily, smoothly रिलीज किया जा सके without causing any destruction. तो this is the way कि we have to take measures which are constructive in nature for the individual. और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। Similarly, अगर आपका नदी ऐसी है जो जिसकी तीव्रता नहीं है, कम है, जो शांत स्वभाव की, तो ऐसी नदी के लिए हमें बहुत ज्यादा
0: मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
1: बस इतना ही ध्यान रखना होगा कि वो प्रवाह का रुख रुकना नहीं चाहिए। जैसी प्रवाह का रुख रुकेगा वैसे ही अंदर जो लाइफ है पानी के वो मरनी शुरू हो जाएगी
0: जी,
1: एंड देन इट विल कॉज प्रॉब्लम्स। और फिर वो एक वॉल्केनो की तरह बाढ़ लेकर जब वो फटेगी, आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अपने स्वभाव को समझना है। जैसे जैसे आप अपने स्वभाव को समझेंगे, जानेंगे, आप समझ पाएंगे कि आपको किन चीजों की आवश्यकता है और किन चीजों की आवश्यकता नहीं है। अब सोचिए, इस प्रकार की ये जो सेकंड एग्जांपल हमने दिया, अगर ये चीज वो व्यक्ति इम्प्लीमेंट करने लग जाए जिसका नदी का प्रवाह यानी कि गुस्सा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, तो उनके लिए ये चीज वो इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी जो कि सेकंड टाइप ऑफ पीपल के लिए दे सकती है। सो दैट्स हाउ इट इज। जितना अंडरस्टैंड करेंगे एंगर को उतना बेटर होता है। अब एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। एक है कंस्ट्रक्टिव और एक है डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव हम सभी जानते हैं तो हम उसमें जाएंगे नहीं. बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव वेज ऑफ एक्सप्रेशन की एंगर के लिए. देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका प्राइमरी इमोशन क्या है, उस मास्क के बिनीत क्या इमोशन है. इज इट फियर, इज इट हर्ट, इज इट डिसअपॉइंटमेंट. आप समझ पाएंगे फिर कि आपको अपने फियर को एक्सप्रेस करना है कि हर्ट को एक्सप्रेस करना है कि डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करना है. जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी बहुत सारी चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं, जैसे कि हमारे ब्रीदिंग में चेंज आ जाएगा, हमारी हार्ट बीट में चेंज आ जाएगा, हमारे जो मसल्स हैं वो एकदम स्टिफ हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, हमें अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होगी. ऐसे लोग जिनका बीपी लो हो रहा है और अगर उनके आसपास के लोग उनकी मदद नहीं कर रहे और उनका सिरदर्द और बढ़ा रहे हैं, तब देखिए उनको जो गुस्सा आता है सारा बीपी लो एक साइड और सडनली उनको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है कि तुम चुप हो जाओ. राइट. तो ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे भीतर हो रहे हैं. अब ये डिपेंड करता है कि उस दौरान में हम क्या इंग्रेडिएंट्स, इट्स लाइक अगर एक यज्ञ चल रहा है और आप उसमें क्या आहुति डाल रहे हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि वो उस यज्ञ की अग्नि को बढ़ाएगा या कम करेगा. तो आप ऐसे सोचिए कि आपका जो गुस्सा है वो भी हवन कुंड के प्रकार ही है.
0: कम हो गए
1: हवन कुंड ऐसा मानिए.
0: तो वही आ गया ना, आग में घी डाल.
1: हाँ, अब आप आग में पानी डाल रहे हैं या आग में घी डाल रहे हैं, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स. सो क्या चीजें हैं जो घी का काम करेंगी आपके लिए, आप उनकी एक लिस्ट बना ले और अपने आसपास जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दे कि देखिए जब हम गुस्से में हो तो ये घी का काम करेंगे, इनको मुझसे दूर रखें, दीज आर हाईली इन्फ्लेमेबल फॉर मी. और उन चीजों की भी लिस्ट बना ले जो पानी का काम करेंगे और वो भी शेयर कर दे, और अपने पास उन चीजों को रखें भी जो पानी का काम करने वाली है. यानी कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी, आपके लिए क्या चीज काम कर रही है, आपके गुस्से के लिए क्या चीज काम कर रही है, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या चीज अच्छे से काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है. ये दोनों में डिफरेंस पता होना रुचिका बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जीवन को बहुत सरल बना देता है. अब जो चीजें पानी वाली है आप उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें. मे बी गो आउट एंड रिलीज योर एनर्जी, क्योंकि गुस्सा जो है दैट इज एनर्जी, गुस्से में हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाती है. तो आप अपना एक स्पेस ले लें, एक थोड़ा टाइम ले लें और आप उस एनर्जी को रिलीज कर दें. आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप भस्त्रिका कर सकते हैं या कपालभाति कर सकते हैं, वो आपके गुस्से को रिलीज करने में मदद करेंगी. उसके बाद आप अनुलोम विलोम से करते हुए भ्रामरी आ सकते हैं और भ्रामरी के बाद आप थोड़े समय के लिए बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. इस फ्लो में अगर आप ये चीजें करते हैं, गिवन दैट कि किसी प्रकार की लोगों को एलर्जी ना हो जिसमें ये प्रकार के प्राणायाम उन्हें इम्पैक्ट करते हो, जैसे प्रेगनेंसी हो गया या कोई सर्जरी हुई हो या फिर ईयर इन्फेक्शन हो, इन बातों का जरूर ध्यान रखें हमारी ऑडियंस. तो अगर ये सब चीजें इस तरीके से फॉलो करी जाएंगी तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा शांत हो रहा है. गुस्से में ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है रुचिका, क्योंकि ब्रीदिंग अपने आप चेंज हो जाती है और ब्रीदिंग से हमारी सारी चीजें इंटरनली कनेक्टेड होती है. तो अगर हम प्राणायाम इसमें इन्वॉल्व करते हैं या एक्सरसाइज जिसमें ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है, एक्सरसाइज इन्वॉल्व कर दें या जैसे रनिंग हो गया, रनिंग इन्वॉल्व कर दें, तो इस प्रकार की चीजें हमारे गुस्से को रिलीज होने में बहुत सहायता दे सकती है. देयर इज वन थिंग दैट आई प्रैक्टिस पर्सनली, आई गिव माई सेल्फ अ चैलेंज, अ मेंटल चैलेंज, कि या तो इस गुस्से को अभी गिव अप कर दो, इस गुस्से को कनेक्ट विद द प्राइमरी इमोशन राइट अवे, और अगर नहीं कर रहे हो तो तब तक के लिए पुशअप्स करते रहो. सो देर इज अ फिजिकल चैलेंज, लाइक फिजिकल एक हमारे पास टास्क है, एंड देन देर इज अ मेंटल टास्क. नाउ आई हैव टू पिक और से माई ईगो हमारे अहम को चूज करना है, वॉट इज इट दैट आई वॉन्ट टू गिव अप फर्स्ट, द साइकोलॉजिकल चैलेंज और द फिजिकल चैलेंज. फिजिकल चैलेंज तो हम ऐसे मान लेते हैं कि हम तो इसको तो गिव अप करने का कोई ऑप्शन नहीं है. तो यानी कि आई विल कीप ऑन डूइंग पुशअप्स तब तक जब तक हमारा गुस्सा साइकोलॉजिकल लेवल से गिव अप ना हम करते, सरेंडर जब तक हम ना करते. एंड दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली वर्क सो वेल फॉर मी. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके लिए
0: सभी काम करे,
1: इसीलिए हमने बोला कि अपने आप को जानना, अपने आप के साथ बैठना, अपनी भावनाओं को अंडरस्टैंड करके अपने लिए खुद के लिए एक डी एस्केलेशन प्लान क्रिएट करना, ये बहुत जरूरी है। तो ये सभी को हमें लगता है करना चाहिए, और इस तरीके से आप डेफिनेटली अपने गुस्से को एक सही दिशा दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा है मैम ने। तो जिस तरह से एक्सरसाइजेस मैम ने बताई, मैं ये पूछने भी वाली थी कि हाँ सभी लोग जो है उसको तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ को अपने अपने इश्यूज, हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं।
1: तो डेफिनेटली देखिए, एक्सरसाइज नहीं है तो आप प्राणायाम कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: प्राणायाम नहीं है तो फिर आप जर्नलिंग कर सकते हैं। आप अपने गुस्से को लिख कर अपनी डायरी और पेन लीजिए और उसमें सब कुछ लिख दीजिए, और उसके बाद उस पेपर को फाड़ दीजिए, जला दीजिए, उड़ा दीजिए, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, बट सिंपली डिस्ट्रॉय दैट पीस ऑफ पेपर जहां पर आपने वो लिखा है। टॉक टू समबडी, शेयर अबाउट इट, रिलीज एट

0: एंगर एंड देन थिंक ऑफ इट व्हाट वाज इट ट्राइंग टू कन्वे टू मी
1: जी। और सबसे खास बात की ये सब करने के लिए हमें अपने आप को जानना
0: बहुत जरूरी है,
1: बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम जानते ही नहीं। हम अपने आस पड़ोस के लोगों का या अपने दुश्मनों के बारे में सब कुछ जानते होते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है ये हम नहीं जान पाते हैं। हमारी अपनी क्या जो खुशियां हैं या अपने क्या शौक हैं, क्या टैलेंट हमारे अंदर है, या तो कई बार हम दूसरों के चलते उसे बाहर निकाल नहीं पाते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं, या तो हम खुद ही नहीं जानते हैं। तो इन चीजों के लिए या कोई भी हमारी हेल्थ इश्यू है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बात है, तो जब तक हम अपने आप के बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं जानेंगे, खुद को समय नहीं देंगे, तब तक हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इन बीमारियों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने गुस्से को समझना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उन्हें खुद को पता होता है कि भाई अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मेरा गुस्सा बहुत खराब है। वो पहले से ही अपने जो जान पहचान के होते तो उन्हें बोल कर रखा होता है कि जब मेरे को गुस्सा आ जाए तो या तो ऐसी कोई हरकत, जैसे आपने कहा ना कि वो घी डालने वाली बात ना करे, तो वो पहले से उन्होंने कन्वे किया होता है कि भाई उस समय मेरे से कोई भी जो है बात ना ही करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि गुस्से में मैं क्या क्या बोल जाता हूँ या क्या क्या मैं रिएक्शन जो है वो कर जाती हूँ या कर जाता हूँ। तो इसी तरह से हमें जो है मैनेज करना जो है अपने गुस्से को, तो उसके लिए छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो और भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद। आप सभी सुन रहे हैं गुंजन रेडियो 91.2 FM, रुचिका और प्रियशी के साथ मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर।
1: जी दोस्तों, तो हमारा जो ये प्रयास है ये भी आपके मन की ओर तक पहुंच रहा है, ये हम उम्मीद करते हैं। तो आइए इस बहुत ही खास बातचीत को जो है आज के कार्यक्रम में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने गुस्से को मैनेज कर रहे हैं। तो मैम, हमने बहुत सारी बातें की गुस्से के बारे में, तो गुस्से को कैसे मैनेज करना, जब गुस्सा आ ही गया उसे कैसे मैनेज करना, कैसे हम उसको एक प्रोसेस में ला सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हमें गुस्सा आए ही ना, हम उस स्टेज तक पहुंचे ही ना कि हमें मैनेज करने की जरूरत पड़े। क्या ऐसा भी कोई टिप्स है या ऐसा कोई रूल है जिससे हम उससे बच सकते हैं?
0: देखिए रुचिका, गुस्सा वैसे अपने आप में एक बहुत ही साधारण सा भाव है। हमारे हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास हर प्रकार के भाव होते हैं और ये हमारे इंस्टिंक्चुअल डिसीजंस के लिए या फिर हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमारा तो ये मानना है कि भावनाओं में कभी भी भेदभाव नहीं करने चाहिए। लेकिन जहां तक बात है कि क्या इससे हमारी सेहत को हार्म होता है, तो यस, डेफिनेटली हार्म होता है। इसलिए हम अपने ओर से जितना प्रयास कर सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, वो हमें करना चाहिए हर संभव प्रयास के नजरिए से। अब जैसे आपने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमें गुस्सा ना आए
1: जी,
0: तो हम ये बोलेंगे कि गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से में कितना बहना है ये हमारे हाथों में, और उस गुस्से से हम कितना इम्पैक्ट हो ये भी हमारे हाथों में। यानी कि अगर हम चाहें तो अपनी अवेयरनेस के माध्यम से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्या चीजें हैं जिनसे हमें गुस्सा आता है। देखिए, प्रैक्टिकलिटी के आधार पर या रियलिटी के आधार पर ऐसा समझिए कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हर कुछ है, सब चीजें हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है, और ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनसे हम डिसएग्री करते होंगे या जिनको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते होंगे। बट जीवन में इस प्रकार से तो हम जी नहीं सकते जहां पर ये चीजें हो ही ना कम्प्लीटली, क्योंकि जीवन तो ऑल और नन में काम नहीं करता, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल शेड्स। तो हमें हमारे अंदर उन सभी शेड्स के प्रति एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और बस इतना ध्यान रखा जा सकता है कि अपने वातावरण में ऐसे लोग हों जो हमारी बातों को समझें, और अगर समझ ना पाए तो कम से कम उनका आदर रखें, उनकी इज्जत रखें। सिंपली देखा जाए तो अधिकांश लोगों को गुस्सा तब दो तीन एस्पेक्ट्स में आता है। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है और उनको अपने ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुस्सा तब आता है जब कुछ वो इनजस्टिस होता हुआ देखते हैं, तो ऐसे लोगों के भीतर एक प्रकार की एक्सेप्टेंस और ओपननेस होनी भी जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि वो अपने आप को उस इनजस्टिस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड देम। वो अपने वातावरण में एक स्क्रीनिंग करें और देखें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस प्रकार के इनजस्टिस को ईदर टॉलरेट कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर खुद वो इनजस्टिस कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें। इस प्रकार की हेल्दी बाउंड्री जब रहेगी तब इंसान अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर पाएगा, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाएगा, और जब इंसान खुद में हेल्दी रहेगा तभी वो इस प्रकार के इनजस्टिस के अगेंस्ट कुछ काम कर पाएगा, कुछ एक्शन ले पाएगा, कुछ मदद कर पाएगा सोसाइटी में। तो इसीलिए एक प्रकार से वो दूरी बना के रखना ऐसे लोगों से, ऐसे वातावरण से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कुछ यही चीजें हैं, और उसके अलावा अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना, अच्छा खाना, अच्छी सोच, अपने आप को रिमाइंडर्स देना, एंकर्स सेट करना, एंकर्स ऐसे कि हमें कौन से इमोशन को ज्यादा ध्यान देना है हम उसको चुन सकें, हम ये चुन सकें कि हम अपने जीवन में प्रेम से ऑपरेट करें, लव से ऑपरेट करें, रादर देन फियर से या फिर इनसिक्योरिटी से या डिसअपॉइंटमेंट से। क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो आपको हर जगह मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है और कभी भी मिल सकती है, क्योंकि आप खुद भी लोगों को डिसअपॉइंट करते होंगे। इसलिए अपने अंदर वो ओपननेस, वो एक्सेप्टेंस और रियलिज्म रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, तो वो चीजें हमें जाननी होंगी कि जिस जिस वजह से हमें गुस्सा आता है तो उससे फिर हमें खुद ही थोड़ा सा जो है बैक स्टेप लेने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, आप उन चैनल से एंगेज ही मत करिए जहां पर आपको पता है पांव रखते ही आपको
1: फिसलना
0: होगा। बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, तो बिल्कुल दोस्तों, हम वैसे भी जब हमें लगता है कि आज से हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा तो हम जानबूझकर उसके आगे नहीं जाते हैं, तो गुस्सा भी उसी तरह से समझ लीजिए कि उससे भी कोई ना कोई हार्म जो है हमारी जो है मानसिक हेल्थ को होगा या हमको होगा किसी, क्योंकि मानसिक हेल्थ भी हमारी, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा ही है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव जो है पूरी तरह से होता है,
0: वो फिजिकल हेल्थ में जरूर कन्वर्ट होगा।
1: जी,
0: जितने भी लोग हैं जो अपने गुस्से को दबा के रखते हैं उनके भीतर आप देखेंगे आज से कुछ सालों के बाद उनके भीतर बीमारियां आएंगी ही आएंगी।
1: जी, तो अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये सारी जो भी हम आप सभी तक बातें पहुंचाते हैं या जानकारियां पहुंचाते हैं, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इस पे जरूर काम करेंगे या करते होंगे। तो आज का ये बहुत ही खास जो सेशन था आप सभी के लिए, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा, और दोस्तों इसी तरह से और भी ढेर सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जी दोस्तों, तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ एक और खास बात आप सभी जानते ही हैं वैसे तो, लेकिन फिर से बता देते हैं कि अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपको भी ऐसी कुछ बातों से फेस होना पड़ रहा है और शायद हमारी इस बातचीत में भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ ना आया हो, कुछ बातें छूट गई हो, तो आप हमसे जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ना हो तो आप क्लिनिक भी आ सकते हैं, आप वहां सेंटर जाके भी अगर आपको काउंसलिंग सेशंस की जरूरत है या कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान चाहिए तो आप आराम से वहां बैठकर जो है अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो हमारा नंबर रहेगा
0: 9354134057।
1: और कहाँ पर आना होगा हमारे दोस्तों को?
0: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला गांव, धर्मशाला, कांगड़ा।
1: जी दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने नोट कर लिया है, और ये बहुत ही खास बातों के साथ साथ आप सेशंस भी मैम से ले सकते हैं, तो आप सेंटर भी जा सकते हैं या फोन से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज का ये सेशन यही खत्म होता है। धन्यवाद।

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू होगा। 2 दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश

0: हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मौजूद है हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, प्रधानमंत्री ने अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है इस शिखर सम्मेलन से अलग, और अभी और किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का आज कार्यक्रम है?
1: हाँ जागृति, आज का दिन राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से करीब 1.5 घंटे बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से ही ब्रिक्स के सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर रुचि जताई है। इसके अलावा इथियोपिया ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर चर्चा हुई। जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की पहली यात्रा है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। और इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगचो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा ऐसे समय फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय में बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई, जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली की चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: चूही? क्या है, क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदत तो सही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आजा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया, मेरा गेम ओवर।
3: चले,
5: असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

उसे ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति

पार्वती के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीबी जैसा बनता जा रहा है?

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशीर्वाद रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: दीदी,
1: क्या है?
0: क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से जो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आ जा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया, मेरा गेम ओवर।
5: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीवी जैसा बनता जा रहा है?

कानू दश मिलब दो मेगा हर्ट्स पर ए दोह सार्यादा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक तशु तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तोह सार्यादा ही स्वागत है। इसी स्वागत कने तोह सारे ही कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी होने न ये सफ़र तुम तक रहा है 2 से 3 बजे तक। तो जल्दी जल्दी सफ़र करने जुड़िया कने इंतजार जड़ा है तुम जो लग्या होंदा कि कालू दिया 2 बजते न कने कालू दिया तुह सारे इस कार्यक्रम कने जुड़ते न। तो इंतजार दी जड़ा घड़ी है से बिल्कुल तुह वास्ते ख़त्म है। तो जल्दी जल्दी जुड़ने वास्ते जड़ा स्टूडियो का नंबर है सभी तुह तक पहुँचाई दे न नंबर तुह तक पहुँचाऊँगा ताई तुह इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज जड़ा है से करी सकते। नंबर है 7018117091 नंबर तुह तक पहुँचाई ता है कने बाकी तुह दा काम है अपनी पसंद दा जड़ा गीत है सभी इस कार्यक्रम च तुह सुनी सकते कने गलबात जड़ा है सभी जरूर कार्यक्रम च करी सकते। कने मौसम दी ओर अगर हाँ नज़र दौड़ांदे न तो मौसम कुथी ना कुथी अपना जड़ा बोली सकते कि बदलाव जड़ा है से लै दे कदी जड़ा है से बरखा लगी पौदी कदी जड़ा है से धुप लगी पौदी। तो इसी कने इस टाइम दा जड़ा धर्मशाला दा मौसम है से अगर हाँ गल करिए ता अधिकतम तापमान जड़ा है से 19 डिग्री सेल्सियस है कने न्यूनतम तापमान की गल करिए 13 डिग्री जड़ा सेल्सियस तापमान है कने लगभग जड़ा अहां गल करने की बरखा वाला जड़ा मौसम है थोड़ी थोड़ी बरखा जड़ा से लगी हो भी है कने तो हाँ अपना जड़ा ख्याल है से मौसम के अनुसार रखा देन कने अहां भी तुहंदा जड़ा ख्याल है से रखने इस प्यारे दे गीत कने प्यारी दी शुरुआत कन्ने

दर्शकों तो सारे सुना दे ने इस वक्त कार्यक्रम माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्ने समय दी और अगर अहाँ थोड़ा दिया नज़र अपनी जिड़े से दौड़ाते हैं तो 2 बजे करी 10 मिनट कार्यक्रम दे सफर च हो कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहाँ कन्ने जुड़ी सकते इसी सफर जो अहाँ अगे बढ़ाने अपनी गलबात करने कने जिड़ा श्रोता न से जरूर अहाँ तक व्हाट्सएप मैसेज भी अहाँ तक पहुँचा देन अपनी जिड़ा फरमाइशा न से अहाँ तक जरूर रखा देन तो जरूर अहाँ समय के अनुसार अपनी जिड़ा गलबात है सभी तुह तक पहुँचानी है कने जिड़ा तो फरमाइशा न सभी तुह तक पहुँचानिया न तशो तो गलबात अगर अहाँ करिए कुछ लाइन न तिना दी कि रिश्तियां दी अहाँ अगर कदर कर देन कोई भी रिश्ता है कदर करना जरूरी है पर अहाँ अपनी जिंदगी जिड़ा है से भाग दौड़ भरी बनाई लियो या हाँ ये बोली सकते कि यहाँ समय जिड़ा है से बिल्कुल कम है समय है भी पर अहाँ इस समय जो कुछ लगा दे से तुह जो ही पता है पर हर जिड़ा सवाल है इसका जवाब जिड़े से यही होता है कि अहाँ समय ही नहीं है तो कुछ ही ना कुछ ही रिश्तों की जिड़ा कदर है से अहाँ जो पैसों से ही करना चाहिए जिन्ना अहाँ पैसे की कदर कर देन तिना या अगर अहाँ रिश्तों की कदर कर देन तो कुछ ही ना कुछ अहाँ अपनी जिंदगी का जिड़ा सफर है उस जो इंजॉय करी पाते हैं जीवन का क्या उद्देश्य है जरूर अहाँ अज ही उपर ही गलबात करनी है क्योंकि हर दिन अहाँ वास्ते एक नई शुरुआत होंगी है या अहाँ दिने की शुरुआत जिड़े से किस प्रकार करते हैं या अहाँ का जिड़ा जिंदगी का जिड़ा सफर है से कुछ तक सीमित है या अहाँ कुथू अपना जिड़ा समय है से लगा देन या कुथू अहाँ अपना समय जिड़ा है से कुछ जो दे देन या मोबाइल फोन च दे दे या अपने जो दे दे या अपने जो कुथी ना कुथी हाँ नज़रअंदाज करा दे हर चीज़ का कोई ना कोई जिड़ा महत्व है से निकली करी आंदा है पर समझना कुदा काम है समझना अहाँ का ही काम है क्योंकि जिंदगी है जिंदगी अहाँ जो बड़ा कुछ सिखाती है तो ज़रूर तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जल्दी जल्दी जुड़िया क्योंकि इस कार्यक्रम का समय भी अहाँ जो यही बोलता है तुह जो यही बोला दा कि जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर से जुड़िया अगर तुह इस समय जो गवाई देन तो तुह दोबारा जिड़े से इस समय जो वापिस जिड़े से नहीं लिया सकते तो इसी कन्ने नंबर तुह तक पहुँचाई देन नंबर है 701-811-7091 नंबर फ्री तुह तक पहुँचाई है कने अहाँ फ्री ते थोड़ा दिया अगे बढ़ते न मैं पहले भी जिक्र किया था कि जिड़ा श्रोता न से व्हाट्सएप के माध्यम ने अहाँ तक अपनी जिड़ा फरमाइश है अपनी पसंद का जिड़ा गीत है से अहाँ तक पहुँचा देन तिना दा ना भी तुह तक पहुँचाई देन तिना दा ना वे ओम प्रकाश जी कने से रहने वाले न अरनी ते तो ज़रूर तिना तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचा देन कने तुह सारी भी इस फरमाइशा जो इंजॉय करा।

0: हाँ बोला दीन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने फिर त्या हाँ वापिस आई ना अपनी गलबात ऊपर कने तो हाँ सारे भी गलबात भी सुना दो ने कने इस कार्यक्रम दा जेड़ा इंजॉय है सभी लै दो ने कने अगर तो हाँ इस कार्यक्रम जो नहीं सुना दे कई बार होंगे ना कि हाँ थोड़ा देर अपने काम च बिजी हो जाते तो काम भी करी लिया कने अपना जेड़ा रेडियो है रेडियो गुंजन धर्मशाला भी सुनी लिया। कार्यक्रम इस वक्त जेड़ा चलिया वे से चलिया माटी दी महक तो जरूर ये तो हाँ तक अपनी जेड़ा महक है से पहुँचा दे अहाँ दी जेड़ा मिट्टी दी खुशबू है से हमेशा अहाँ जो जोड़ी करी रख दी है एक ही दुए ने। अगर अहाँ मिट्टी की गल करिए मिट्टी जेड़ा है से अहाँ जो मिट्टी की जेड़ा देन है से बड़ी ज़्यादा है पर अहाँ किस तरीके ने उस चीज़ की कदर करते हैं या उसका जेड़ा महत्व है से किस तरीके ने समझते हैं से अहाँ पर निर्भर करते हैं। दशो तो जीवन का क्या उद्देश्य है हर दिन अहाँ प्यागा उठते हैं सही अहन का अलार्म है सही अहन की डेली रूटीन है प्यागा जल्दी उठना है अलार्म जेड़ा से अहाँ रखना है कने उसी डेली रूटीन कने अहाँ जेड़ा से हर दिन जल्दी उठते हैं अपनी जिंदगी जो भाग दौड़ भरा जेड़ा से अहाँ कुथी ना कुथी बनाई लिया। तो इसी कने पहले जेड़ा श्रोता है ना से अहाँ कने जुड़ चुके हैं कर दिन तिना कने गल बात। हेलो हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तो हंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी तो हम कुछ ते बोला दे ना ना क्या है जी
1: ना सुरेश बोला सुरेश हाँ ने दे
0: जी सुरेश जी क्या हाल चाल है जी
1: बढ़िया जी
0: जी क्या काम कार छेड़े तो हाँ क्या करा दे
1: काम कार रोटी फोड़ा
0: जी अच्छा रोटी खवा दे तो आज तो
1: हाँ जी,
0: क्या स्पेशल जड़े से बनाई थे खाने च
1: आज तो राजमा बनाई थे जी
0: जी अच्छा राजमा बनाई थे आज तो
1: हाँ जी
0: जी ता नोई ताजी
1: नोई ताजी सब ठीक ही है
0: जी ता योल दा मौसम कदे है जी
1: योल दा मौसम ठीक ही है फिलहाल तो
0: जी बरखा तो नहीं लगी उस साइड
1: ना ना बरखा ही नहीं बोले छट्टे दे तो इस बार चुकी आ दी
0: जी अच्छा फिर जेड़ा है से रुकिया दी
1: हां जी हां जी
0: जी जी ता सुरेश जी आज तो हां कुंदिया गीत सुनने जी अपनी पसंद छ
1: गाना सुनना राती सोच दी गुरां दा नाम जपन सवेरे उठी भुली बो जांदी
0: जी अच्छा राती जेड़ा से सोची लंदे कने फिर प्यागा भुली आंदे ना जी
1: हां जी इस सीखा गया।

0: गाना है सीखा।
1: जी अच्छा, सीखा गया है गाना।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जी, जरूर ये फरमाइश जेड़ा है से तुहां तक पहुंचान देन जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
0: ठीक है जी, ठीक है।
1: जी दर्शकों, तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कहने, तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्ने जुड़ी सकते, कन्ने अहां कन्ने गलबात जेड़ा है से जरूर करी सकते। तो श्रोताओं, गलबात अहां जेड़ा से जीवन जेड़ा से अहां वास्ते बड़ा ही महत्व जेड़ा से रखता है, क्योंकि जीवन का जेड़ा सफर है से अहां जो हर दिन अनुभव भी दिंदा है, कोई ना कोई जेड़ा सीख है से जरूर दिंदा है, पर अहां क्या जेड़ा सीख है से अपने जीवन ते लैंदे न, या अपने जीवन जो किस प्रकार इंजॉय करते न, अपने जो किस प्रकार अहां समय दिंदे न, क्योंकि समय जेड़ा से हर जगह मायने रखता है, समय का जेड़ा महत्व है से अहां दे जीवन च बड़ा ही ज़्यादा है। तो इसी कन्ने अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ा देन, कन्ने तुहां जो अगले गीत दी ओर लेकर चलियान, अड़ियां टू ए गीत तुहां तक पहुँचा देन, जरूर तुहां दियां भी जेड़ा अड़ियां न तिना जो जरूर पूरा करा।

0: दर्शो तो तुम सारे सुनिया ये गीत ये फरमाइश अड़िया टू तो ये फरमाइश अह पहुँचाई इंदू जी तक कने से रहने वाले न सिद्धपाड़ी ते तुह सारे भी अपनी अपनी जड़ा अड़िया न से जरूर पूरी कीतिया होनिया न या हाँ ये बोली सकते कि अपने जड़ा शौक हैं से पूरे किए होने न पर आज ने दौर की गल करिए तो कुछ ना कुछ अहाँ अपनी जिंदगी जो इतना भाग दौड़ भरा बनाई लिया कि यहाँ वास्ते खुद जो समय नहीं है या खुद वास्ते समय नहीं यहाँ जड़े से निकाली पाते न कोई जड़े से अपनी बस की ओर भागा दे कोई जड़े से अपनी ऑफिस की ओर भागा दे या हर कुसी दी अपनी अपनी जड़ा डेली दी रूटीन है उस तरीके ने जड़े से अपना सफ़र जड़ा इंजॉय करा था कने खुद जो नज़रअंदाज जड़े से करा था तो हम भी थोड़ा दिया सोच विचार करा कि हाँ दिने दी शुरुआत किस तरीके ने कर दी न आजकना जड़ा दिन ने से हाँ किस तरीके ने इंजॉय किया या अपने जड़ा काम मन से किस तरीके ने किते अपने जो समय दिता या नहीं दिता या खुद जो समय दिता या नहीं दिता कई बार अहां दी जड़ा तबीयत है से अहां जो बोलती है कि मेरी तरफ भी जड़ा से थोड़ी दी नज़र दौड़ाई लिया पर अहां कुछ ही ना कुछ ही अपनी सेहत जो भी नज़रअंदाज करना जड़ा से शुरू करी देना तो सेहत तो सारे जो ही पता है कि अहां दी जिंदगी बड़ी अहम भूमिका अदा करती है सेहत ठीक तो सारे काम ठीक तहां दा जिहड़ा समय है सभी ठीक है क्योंकि सेहत जालू अहां जो दस्तक देना शुरू करी दी है या अहां जो खुद जो फील होंदा है कि नहीं अहां दी जिहड़ा सेहत है से कुछ ना कुछ अहां जो दस्तक देना जिहड़ा से शुरू करा दी तहां थोड़ा दिया सोच विचार करते हैं ना कि अहां दी जिहड़ा सेहत है से कालू ठीक होनी है क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि अहां दी जिहड़ा सेहत है से फिट एंड फाइन रहे इसी कने अगले जड़ा श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
1: नमस्ते जी नमस्ते
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
1: बढ़िया जी बढ़िया
0: जी तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहांदा नां क्या है जी
1: चैतड़ू ते बोला है
0: जी चैतड़ू वाले दे क्या हाल चाल है जी
1: खरे
0: जी तो मंगल जी गल बात अहां करा दे थे कि अहां दे जीवन दा क्या उद्देश्य है तोहां भी थोड़ा दिया सोच विचार जरूर कर दे होने न कि अहां हर दिन अपनी जिंदगी जो भाग दौड़ भरा जड़ा से बना दे ना जी
1: हां जी
0: कने कुछ ना कुछ खुद जो नजरअंदाज करना भी शुरू करी दे
1: क्योंकि
0: पहले अहां ये सोचते कि अहां वास्ते काम जरूरी है ना जी खुद जो ठीक रखी पांदा है ना जी कने उसी तरीके ने अगर अहां गल करिए ता इंसान है ते इंसान कने काम मन जालू इंसान जी इस दुनिया जो छड़ी करी चली आंदा है तो से सारे काम बिल्कुल खत्म जी तो जिंदगी है जिंदगी दा मेरे आईडी ने हर दिन एंजॉय करा अपने जेड़ा शौक हैं तिना जो भी पूरा करा अहां ये नहीं बोला दे कि काम करना जरूरी नहीं है काम करना भी जरूरी है जितना जी जी तो मंगल जी आज तो हम कुन दिया गीत सुनना पसंद करके
1: गीत सुना दिया था मेरी काम वाला
0: जी काम बन दिया तेरे मुकड़े ने
1: हाँ जी काम मेरे साथ बन गया जी
0: जी बड़ा प्यारा भजन है ना जी
1: हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा मेरा खराब हो गई जरा गेम, तो
0: जी
1: नहीं कॉल कर ही पाया मैं इतने रोज।
0: जी अच्छा, फोन जड़े से तुहदा खराब हो गया था
1: खराब हो गया। हाँ
0: जी, तो तुहां रेडियो जड़े से कैदी पर सुना दे, फोने पर की रेडियो सेट पर एफएम की?
1: फोन ने भरी जी,
0: अच्छा फोने पर ही सुन दे।
1: सेवा तो अंदर जिते मर्जी जी बज पा मैं। चलो
0: जी जी जरूर जी जी तुहुंदी
1: हाँ
0: फरमाइश जड़े से तुहां तक पहुंचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा। कशो तो वहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ाते हैं, कने तो जो लेकर चलते हैं अगली फरमाइश की ओर।

दर्शकों तो सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने फिर हम वापिस आई होना अपनी गलबात ऊपर कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ी सकते कने हाँ कने गलबात जिड़े से जरूर करी सकते। गलबात करने वास्ते जिड़ा हाँ दा नंबर है स्टूडियो दा जिड़ा नंबर है से तुह तक फिर ते पहुँचाई देना क्योंकि नंबर तुह तक पहुँचेगा ताई तो तुह इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते। नंबर है 701-811-7091। नंबर तुह तक पहुँचाई है कने फिर यहाँ अपनी गलबात उपर जिड़े से वापिस आई आते हैं। दर्शो तो जिंदगी का जिड़ा सफर है या जिंदगी का जिड़ा उद्देश्य है क्या वे ठीक है काम करना भी जरूरी है पर कुती ना कुती खुद जो समय देना भी जरूरी है। थोड़ा दिया सोची करी दिखा कि यहाँ खुद वास्ते कितना की समय जिड़े से निकाल देन दिन भर हाँ अपना जिड़े से काम करते रहन देन। कई बार हाँ ये भी सोच विचार करते हैं ना कि घरे दे जिड़ा काम मन से तो कभी भी ख़त्म जिड़े से नहीं होंदे से हमेशा चले रहेंदे पर फिर भी यहाँ खुद वास्ते समय जिड़े से नहीं निकाली पाते या खुद जो नज़रअंदाज जिड़े से करते हैं ना दर्शो तो खुद वास्ते समय निकालना है तो हाँ कने समय जालू निकाल देना तो थोड़ी देर तो हाँ जो भी आंतरिक जिड़ा शांति है से ज़रूर मिलती है कने मन करता है कि कुछ जिड़ा अपनी पसंद का कुछ चाहे से चाहे पीना तो हाँ जो पसंद है या कुछ भी करना पसंद है तो ज़रूर तो हाँ से काम जिड़े से करी सकते कने खुद जो खुशी जिड़े से ज़रूर दे सकते। क्योंकि घरे की गल करिए महिला की यहाँ गल करते न तो कुथी ना कुथी पूरा दिन जड़े से घरे के काम च बिजी रहते हैं या जड़ा ऑफिस वर्क वाले न सभी अपना जड़ा डेली दी रूटीन है तिहा जो जरूर अपनाते हैं कने एक दिन छुट्टी होंगी है तो हाँ जो हमेशा ये सोच विचार करते हैं कि ना कोई अलार्म होना ना कोई जड़ा टेंशन है सह होनी क्योंकि फुल ऑन इंजॉय करना या अपनी जेड़ा कई बार हाँ ये भी सोचते हैं कि अपनी जेड़ा नींद है सभी पूरी करनी है या थोड़ा देर खुद जो रेस्ट देनी है पर छुट्टी वाला दिन होता फिर भी अहम जो काम जेड़ा ने से कुथी ना कुथी नज़र आई आते हैं क्योंकि काम करना भी जरूरी है पर तो हाँ अपना जेड़ा समय है उस जो मैनेज जेड़ा से ज़रूर करी सकते क्योंकि समय जेड़ा से हर चीज़ अहम जो सिखाइंदा है। अच्छा समय है तो अहम जो जेड़ा अच्छा समय है अगर अहम का अच्छा समय चले तो कुछ ना कुछ अहम अच्छे समय से भी सीखते हैं कने अगर अहम का बुरा समय है तो बुरा समय जेड़ा से अहम जो बड़ा कुछ सिखाई करी जाता है पर अहम किस प्रकार समय से जेड़ा सीख है से लेन देन से अहम पर निर्भर करता है। तो इसी कने अहम फिर ते थोड़ा दी आगे बढ़ते न कने अगले जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते न इंतज़ार तो तुहां जरूर करा दे होने न कि अगली जेड़ा फरमाइश है से कालू दी है तुहां तक पहुँचती है कने तुहां ये भी सोच विचार चुने न कि हूँ पता नहीं कुदी फरमाइश जेड़े से तुहां तक पहुँचनी है तो ज़रूर पहले तुहां इस गीत जो इंजॉय करा।

दर्शकों तो सारे सुनिया ये फरमाइश सुरेश जी की फरमाइश तिने तक पहुँचाई कने से रहने वाले न सिरठाना थे। इसी कने फिरी ते वापिस आई उन अपनी गलबात लेकरी दर्शकों मी टाइम यानी कि खुद वास्ते समय निकालना कितना ज़्यादा जरूरी है। दिन दे जेड़ा न 24 घंटे न तीस च सिर्फ तो 10 मिनट भी खुद वास्ते निकालते न कने इसी कने प्रतिश तो हाँ जो एक शर्त जड़ा से रहनी है क्या हूँ तो हाँ सोचा देनी ने कि क्या शर्त ये रहनी है कि मोबाइल फोन जो साइड रखना पौना लैपटॉप जो भी साइड रखना पौना ताई तो हाँ खुद जो 10 मिनट जड़ा से दे सकते क्योंकि 10-10 मिनट अगर अहाँ खुद जो दिन देना तो कुछ ना कुछ अहाँ अपनी सेहत जड़ा सेहत है उसका भी ख्याल रखी पाते न कने खुद च जड़ा खुद का जड़ा लाइफ स्टाइल है उस जो भी थोड़ा बदली पाते न इसी कने अहाँ जड़े से प्यागा जल्दी उठते न तो सबसे पहले क्या काम करते न सोच विचार करा क्या काम करते तो हाँ मुझे तो लगा था सबसे पहले तो हाँ मोबाइल फ़ोन जो ढूंढते न कि मोबाइल फ़ोन कुछ है यही सोच देना कि नहीं मुझे तो यही लगता कि तो हाँ यही सोच देना। बच्चों की गल करिए या युवा पीढ़ी की गल करिए ज़्यादातर अहाँ घंटों घंटों मोबाइल फ़ोन पर बिजी रहते न कने अपना जेड़ा ज़्यादा समय है से मोबाइल फ़ोन च दिंदे न कने कुछ ना कुछ खुद जो नज़रअंदाज करते न सोशल मीडिया चाहाँ रील्स जेड़े से दिखते न कई बार अहाँ इस रील के चक्कर च खुद जो समय नहीं दे दे या अपने घरे दे फैमिली दे जेड़ा सदस्य न तिना जो समय जेड़े से अहाँ नहीं दिंदे न तो ज़रूर समय की जड़ा कदर है से ज़रूर करा क्योंकि समय की अहाँ कदर करगे ताई समय अहाँ की कदर करता है। इसी कने अहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है कने तो जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलना है चलते न सुनते न इस प्यारी दिया फरमाइशा जो

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना दी थी अपनी रेडियो तो शशि कहने तो श्रोताओं तो हाँ सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जेड़ा समय है से तो हाँ तक रहता है 2 से 3 बजे तक। तो समय जेड़ा है से उन्हें हाँ जो जरूर ये बोला था कि उन कार्यक्रम ते जेड़ा इजाजत है से जरूर ले लिया, कार्यक्रम ते जेड़ा अनुमति भी जरूर लेनी है, कने तो हाँ भी अपना जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा दे उन्हें ने अपना ख्याल भी रखा, कने जेड़ा जीवन दा सफर है, जीवन दा सफर अहां जो हमेशा यही बोलता है कि हर पल जो इंजॉय करा, क्योंकि हर पल जो अगर अहां इंजॉय कर दे ना ताई अहां अपनी जिंदगी दे सफर जो कुथी ना कुथी इंजॉय जेड़े से करी पांदे ना। इसी कन्ने तो सारे अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कन्ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: चूही? क्या है, क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदत तो सही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से जो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आ जा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया, मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीवी जैसा बनता जा रहा है?

91.2 तो मेगा हर्ट्ज पर मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: चूही?
1: क्या है?
0: क्या ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आ जा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
5: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

उसे ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति।

पार्वती के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वारा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की

0: का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीवी जैसा बनता जा रहा है?

नमस्कार श्रोतो, एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम लेकर आऊँ सचिन कपूर हाजिर बुचूगा हिंदी अपनी गप्पा। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन हाँ सभी उड़ने वाले रहा, सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल ने श्रोतो तुंदे? उम्मीद करनो तुंदे हाल चाल बिल्कुल फिट एंड फाइन भुने, तो सब खरे भुने ने, खुश भुने और तंदुरुस्त ज़रूर भुने ने अपने घर अंदर। और बाकी श्रोतो ये उम्मीद ही है कर सकते हैं, बाकी जिनके है सब जान दें श्रोतों के उम्मीद तो बड़ी घर था कुछ भी नहीं इस दुनिया में, सब कुछ उम्मीद और आशा थो ता टिकुरा हा। ये उम्मीद आ कि दत्तो वसु ये करना प्रोयो असुतियाँ करना, ये सिर्फ और ये सिर्फ और सिर्फ आकर उम्मीद ही था आशो तो, अन्यथा बूढ़ियों तो कुछ भी पल भर में किया सुबह।

चिगंदा हाश होता हूँ, है ना। सो उम्मीद पर गया सो दुनिया टिकुरे हाश होता हूँ, और ए उम्मीद यह है भी कर दिन किन दे सब श्रोता के ना सो ठीक भून इन दे सियाने के न सो ठीक भून और खुश भून सियाने तंदुरुस्त भून सियाने। बहरहाल कार्यक्रम इन दी अपनी गप्पा लेकर आऊँ सचिन कपूर हाजिर हुआ हा, और इस कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारी के अनसो असु तुसु तक पहुँचानी हिन श्रोता हूँ। सभी पहले धर्मशाला रे मौसम जाने लेंदे, हालांकि अब बरसात गाने आ रहे तो जोरदार बरखा के असो बुच्चु कर दे हा, इवन की जोरदार काफ़ी ज़ोरदार बरखा की असो बुच्चु कर दे हा। शो तो बहुत से अगीता लेकर यह है हाजिर हुए हैं। अक जानकारी हूँ अपने आईपीएच डिपार्टमेंट रे जो इन द ग्राउंड वर्कर्स ने तीनों देना चाहता हा, खासकर जो नियर नोटरानी मंदिर आसपास के न सो इन द आईपीएस डिपार्टमेंट रे ग्राउंड वर्कर्स ने तीन तक रे जानकारी पहुंचाना चाहता कि बस अब जो हम जाने घर थो निकलो तो तखनी है रिसेंटली किया मतलब अक पाइप की असो तड़ी नोडरानी मंदिर रे बिल्कुल सामने जो पाइप अन तड़ी पाइप की असो टूट गया, और जो ठेरी बजो पानी की असो बहुत बुरी तरीके हो गई ओवरफ्लो बच्चू करता हा। अगर आईपीएस डिपार्टमेंट रे कोई भी व्यक्ति मेरी आवाज़ वीडियो जो हुणु कर दे तो सो ज़रूर जो योल रहा आईपीएस डिपार्टमेंट रहा ग्राउंड वर्कर्स ने तीन तक सूचना की सो जरूर पहुंचाई दीन, ताकि पानी वेस्ट भूणियो के असो बचे रहे सो। तो ये इस रेडियो रा दायित्व है, इस रेडियो रा के असो कर्तव्य है कि सूचना किया सो अपने मनु तक जल्द थो जल्द किया सो पुजे गच्छा। ता बिल्कुल ये सूचना जो जरूर मैं प्रसारण तक रीता इस मैं प्रसारण करी थे सूचना, अगर हुणु कर देन आईपीएस डिपार्टमेंट रहे ग्राउंड वर्कर्स या कोई भी अधिकारी तो सो ज़रूर किया सो नोडरानी मंदिर रहे सामने जो पाइपन तड़ी की चिगरी किया सो पानी ज़रूर बंद करीन, अन्यथा काफ़ी अधिक मात्रा में किया सो पानी वेस्ट भुच्चू करता हा, और पानी री मात्रा की सो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट बच्चू कर दी हा। ता धर्मशाला रे मौसम भी है जानी लेंदे इन शोतों, इस समय री गल करिए शोतों तो आज हल्की बरखा के सो भोया पिछले ने टाइम के सो काफ़ी जोरदार बरखा गया सो सब पास लग रही भी थे शोतों ता लगभग की सो 19 डिग्री सेल्सियस रे आसपास की सो आज हाई टेम्परेचर रे हुआ शोतों, और लो के सो 13 डिग्री सेल्सियस रे आसपास की सो रहने आला हा शोतों। ह्यूमिडिटी की गल करूँ शोतों तो अराउंड 80-85% रे बिच किया सोरे उगर दिया। तो चलिए जी कार्यक्रम मंच आगाज कर दिन, और तो सब श्रोता सूगी जोड़ी सकते हैं 7-0-8 अज सेकेंड सैटरडे तो है तो छुट्टी रा आनंद की सो सब ले होना हाँ, तो जरूर कॉल कर सकते हैं 7-0-8-8-8-7-0-9-8 पर नंबर आख मौके फिर आऊँ शेयर करनो हाँ 7-0-8-8-8-7-0-9-8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं, और अपना पसंदीदा गीत श्रोता हूँ बिल्कुल होने सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो बिल्कुल तो है साझा कर सकते हैं। यह गल खास ख्याल रहे कि जानकारी की सो रेडियो मंच साझा करने लायक जरूर बुआ श्रोता हूँ, रेडियो मंच दसने लायक किया सो जरूर बुआ।

0: शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में इस वक्त इंदी अपनी गप्पा कहने सो बिल्कुल लाइव चल रही थी वीडियो सेट में बहुत प्यारे दे गीत किए सो तो है सभी हूँ शोतो इस प्रकार सो की सो जानकारी रा सिलसिला यूँ ही चलते रहना शोतो पिटारे यूँ ही खोलते रहना हाँ बरहाल कार्यक्रम जो थोड़ा करे आगू बढ़ देने और कुछ एक खास जानकारी होगी तो रूबरू करवा देने और शोतो तो है सब कॉल कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत हो नहीं सकते हैं 7 0 8 8 7 0 9 8 पर नंबर अक मौके फिर आऊँ शेयर करने तू होगी 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हो नहीं सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं यह गलरा बिल्कुल जानकारी तो है साझा कर सकते हैं और कार्यक्रम जो है थोड़ा करिए आगे बढ़ते हैं श्रोतों क्या श्रोतों तुम पता कि एंटीबायोटिक जो है खंदे दवाई सो असुवस्थ कितनी ज़्यादा तुम मनना नहीं है कि बैड बैक्टीरिया जो तो मारते है लेकिन ततीसो क्योंकि सो पेट अंदर जो गुड और मददगार बैक्टीरिया बुंदे ना तीनों भी पूरी तरीके हो गए कि आ सो एंटीबायोटिक ख़त्म कर ही देंदे हाशो तो ये जो असु आजकल लगूरा ना सर्दी जुखाम जंगा बाई पीड़ा नोज चलना गले पीड़ मुंडे पीड़ टुंडे पीड़ तो ये सब चीज़ें क्या ना इस वक्त बिल्कुल चल रही और इति मन जाए है कि सो एंटीबायोटिक तो असू डॉक्टर दिंदे ही दिंदे और सो असू खाना ही पैंदे ही है ना तो तेरे बारे अज चर्चा की सो असू जरूर करने हाँ शोतो अपने इस कार्यक्रम में लेकिन आइए इंदे श्रोतागण असू की कनेक्ट बुझ गया हिन उस दिन कौन बल्लू दिन और खड़ी थो बल्लू करते हिन नमस्ते जी
1: नमस्ते भाजी
0: हेलो
1: भाई नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: रेडियो कौन जी धर्मशाला
0: हाँ जी बिल्कुल जी
1: भाई आओ तो कंडी बोल दो कंडी पालमपुर कंडी बोल दो भाई
0: अच्छा पालमपुर री कंडी था
1: हाँ जी मिल जाते गाना जो बढ़िया पहाड़ी गाना
0: हाँ बिल्कुल जी क्या नाम तुम्हारा
1: मेरा नाम किशोरी लाल
0: जी पालमपुर री कंडी था बोलूं देन बड़ी प्यारी जगह पालमपुर री कंडी
1: डर
0: लगता है
1: अच्छा
0: इस टाइम क्या करू कर दिन तो है कैलूरा कमाना तो है इस टाइम
1: जनाब
0: धन्यवाद तो तुम कार्यक्रम जो बिल्कुल हगू बढ़ते हैं तो सब बनरो ने समय आ जाए सचिन कपूर सोगे और इन अगले श्रोता सोगे कनेक्टेड हिन नमस्ते जी
2: हेलो नमस्ते जी गाना सुन
0: कौन बोलूं देन और कड़ी थो बोलूं देन जी
2: मैं सिद्धबाड़ी से बोल रही
0: हूँ सिद्धबाड़ी थों कौन बोलूं देन क्या नाम तुंदा
2: शानवी
0: जी कौन देन गीत होना तुसु
2: नागका
0: हाँ जी
2: नागका
0: ठीक है शानवी जी धन्यवाद
2: ठीक है
0: तो ये शो तो पहले जो कंडी थों इन्दी फरमाइश पर ए यारी फरमाइश हो रही है कंडी थो है ना पखला मनु खुदरा पानी हो डर लगदा मेरे आ पखले आ मनु आ फेरी कुटे तू इस गीता हूँ नंदन कजो के दूर प्योरे वल्लू कर देन और इस समय सो फीलिंग के सो खत्म ना करना चाहते ने तो जरूर इस गीता के नारी के ना सो चलते हिन और इतना आनंद लेन देन छो तो ऐसा भी बाद जानकारी साझा कर ले तू होगी।

0: पखला मनो खुदला पानी हो डर लगता। बहुत प्यारे दे गीत के सो है हुणु करनैल राणा जी की आवाज़ में चौदह तो सब इस समय ट्यून गुरुआई 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला हो रहा हूँ। सचिन कपूर बिल्कुल हाजिर हाथ हूँ रेडियो सेट में 91.2 MHz पर ता शोतों कॉल जरूर कर सकते हैं 7 0 8 8 7 0 9 8 पर। इसी सब की श्रोतों इन अगले श्रोतागण के अनुसो असोगे बिल्कुल लाइव मौजूद हैं तो है सब ये ट्यून कर रहा रेडी गुंजन धर्मशाला और हूँ सचिन कपूर इन द श्रोतागण कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते भैया।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: हम सिद्धवाड़ी से बोल रहे हैं सिंगार ब्यूटी पार्लर।
0: अच्छा जी ठीक ठाक राजी बाजी।
1: हाँ जी भैया।
0: और जी
1: भैया सॉन्ग सुना दो, बारिश हो रही है, कोई शिव जी जी का सॉन्ग सुना दो अच्छा सा।
0: अच्छा ठीक है जी जरूर हूँ।
1: ओके थैंक यू भैया
0: धन्यवाद जी। अगले श्रोता जो कि ऐसा कनेक्ट कर दे हिन आया। नमस्ते जी।
2: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
2: हेलो।
0: हेलो नमस्कार जी।
2: नमस्कार
0: जी। कौन बलुंदन और कड़ी थों बलुंदन
2: आऊं राउत बल्लू कर दा।
0: हां जी
2: इत बाड़िया थों।
0: अच्छा जी सिद्ध बाड़ी थों बड़ी कॉलेज चुगर दिन रोई ची गुन देना गीत हो ना
2: आऊं बोटलिए।
0: हाँ जी
2: बोटलिए
0: प्यारी बोटलिए
2: जी।
0: ठीक है रोई जी जरूर होने ले।
2: हेलो
0: धन्यवाद।
2: नील रहने की आवाज
0: नहीं जी प्यारी बोटलिए। ठीक है जी जरूर होने ले। नमस्ते। श्रोतों कार्यक्रम इन अपनी गप अगेन सो बिल्कुल लाइव चल रही तुम्हें वीडियो सेट में और बरखा अब हो सकते बाहर जरूर लग रही बहुत का चूंकि अस वो इड़ी अंदर था महसूस बिल्कुल ना बच्चों करता कि बरखा क्या सो लग रही है लेकिन फिलहाल इन अगले श्रोता भी अस वो की कनेक्टेड हैं। उस दिन कौन बोलूँ दिन और कड़ी तो बोलूँ दिन। नमस्ते जी। हेलो।
3: नमस्ते।
0: नमस्ते।
3: हेलो।
0: हेलो नमस्कार जी। हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी
3: ठीक है ना।
0: हाँ जी ठीक ने जी। तो है बोले तो है ठीक ना।
3: हाँ जी
0: कौन बोल लूं देन और कड़ी तो बोल लूं देन
3: आऊं करण बोलूं तो बगैर हूँ।
0: अच्छा बगैर हूँ करण जी तो है आऊं गलत नहीं तो सोई ने जिन्हें शायद मैं ये बोलूं तो कि कड़ी भी है कॉल कर देन ते तड़ी या कभी ऑफिस में या करखा मतलब ऐडी कॉल करूँ कर देन रेडियो स्टेशन में ता है अंकल या इस प्रकार रा भैया शब्द के सो इस्तेमाल ना कर दें सर बले सकते या नाथों पुकारे सकते है ना।
3: हाँ जी
0: तो दी बात तो है नमस्ते करे सीधा है तो मेरा ना ले लिया बिल्कुल ना ले सकते तो है नमस्ते सचिन जी बले सकते ना।
3: हाँ जी
0: ठीक है रोहित जी कौन दिन गीत हो ना तुसु
3: नागा खोल कुंडिया।
0: नागा खोल कुंडिया।
3: हाँ जी
0: और रोहित जी कितने को आज कुना दिन तुंदा
3: ठीक ही करो
0: आ क्या क्या करो रोहित आज पूरे दिन तो है
3: कुछ ना काम कमा मम्मी ऑपरेशन हो रहा था।
0: ओहो क्या भी छू रहा तू माता जी जो
3: मम पेट अंदर पास ही ना।
0: हाँ जी
3: तेरा ऑपरेशन
0: था। अच्छा पेट में बत रहे थे कितने एमएम रहे थे 15 एमएम रे। ऑपरेशन करी बुआ धर्मशाला या टांडा
3: धर्मशाला छुरी बल्ले पर चढ़ी ऑपरेशन दे कमरे का काम चा तो टांडा हुआ।
0: अच्छा
3: जी
0: चलिए ठीक है रोहित जी माता जी रा ध्यान के सो जरूर रखना है ना जी।
3: हां जी
0: ठीक है रोहित जी है तुम्हारी फरमाइश के सो जरूर पूरी कर ले।
3: ठीक है
0: धन्यवाद।
3: धन्यवाद
0: अच्छा तो ये रोहित जी थी जो कि आई थिंक ये नोए नोए के सो रेडियो सो की इन दसों की जुड़े थी ये शो तो और ये मुझो एक टाइम ये बोलो तो कि नमस्ते अंकल जी है ना ता मैं ये दसो तो कि करिए भी है ना शो तो अंकल भैया मतलब ऑफिशियली एक बात ठीक लगता जी इनका खमोलेगा अंतर ही ठीक लगता लेकिन जहने है कख ऑफिस में गंद या है रेडियो मन चे कि असो कॉल करू कर दिन यह आपू भी कई वक्त जहने है इंदी रेडियो में जॉब ना देता भी है कई वक्त आके सो रेडियो में कॉल करे तो है भी सर मैम या तेरा ना लेकर गया सो तीनों पुकार दिन है ना अंकल या भैया बड़ा ऑकवर्ड दे अवर्ड लग दिन कि करखा है कॉल करू कर दिन ये करिया है बलन तो सो बड़ा अजीब और अटपटा दे कि असो जरूर लगता है तो इतनी कोई समय मतलब इतनी कोई ये नहीं कि कोई छोटी दे बच्चे भी की ऐसो मुझो ना लेकर ही पुकार ही सकते है ना और कोई सियाने तो चलो ना लेकर ही बल दे हिन फिलहाल इन द अगले श्रोता भी ऐसो होगी कनेक्टेड हिन नमस्ते जी
4: नमस्कार सचिन जी
0: नमस्कार जी नमस्कार
4: हाँ जी और ठीक ठाक
0: बहुत बढ़िया जी कौन बोल लूं देन और कड़ी थम बोल लूं देन
4: सीमा बोल लो तो सुने आ रहे हूँ
0: अच्छा सीमा जी जी सीमा जी ठीक ठाक ना
4: ठीक बढ़िया
0: कर करे लग रहे हैं
4: कर लगना बस देख रहे हैं ना गाना होने और दे अच्छा। रेडी गुंजर
0: चलिए तुम तो अपना रेडी गुंजर है ता सीमा जी बरखा लग रही खाने आ रहे बस है कि ना
4: लग रही थोड़ थोड़ लग रही
0: है अच्छा थोड़े थोड़े लग रहे
4: हैं
0: आज पूरे दहाड़े में कह रहे हो मौसम खनेर रहे अलग ही मौसम रहा ना कुछ की नाग छतरी रही छत्र छाए अंदर बंदे हाँ जी
4: रोज ही बंदे वर्षा
0: हाँ बिल्कुल आऊं ये दसना चाहता कि एशिया री सब तो विच पंचायत में तो है रे कर दिन अपने टाइम में बड़ी विच पंचायत थी एशिया री ना जी सब तो ज्यादा विच पंचायत थी और इड़ी सब तो अलग भी है रहा कि क्लाइमेट की एड़ी यार बड़ा ही अलग रहा अगर तो है रे लिया कि फतेहपुर साइड इले तो धूप लग रही बोनी बरखे ने जोरदार बरखा बोनी इड़ी यार क्लाइमेट अह दस ही ना सकते ना अह के कोई भी आए मुझे लगता कोई भी ना एग्जैक्टली ना दस ही सकता जो तड़ी रे करता सो ही दस ही सकता बस
4: बिल्कुल
0: चलिए ठीक है जी जरूर इस गीता जो हुन ले दसु
4: ठीक है जी धन्यवाद
0: धन्यवाद जी धन्यवाद चलिए शो तुम कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के इनसो तो है सब हूँ कर देन आर जे सचिन कपूर सो के कीवी खाने तो बहुत ज़्यादा फायदे बुंदे इन शो तो भी हूँ लिया डायबिटीज़ भी कंट्रोल कर दे हा कीवी शो तो ब्लड माँ जो क्लोटरिंग बुंदी तथी वो भी के सो रोक दे शो तो इम्यूनिटी सिस्टम जो भी की ठीक मजबूत बनती है इम्यूनिटी बढ़ती है कीवी शो तो है ना कब्ज तो दूर रखते हैं कि विश्व तो हार्ट रेट वास्ते बड़े फायदेमंद बनते हैं और बाला वास्ते बाल वास्ते कि सो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिन दे कि भी चलिए चलते हैं शतम श्रृंगार ब्यूटी पार्लर री और श्रृंगार बहुत क्या पता ली तो मैं ये रूनी अंदर गिची करी कि प्यारा कि नहीं कभी मौका मुड़ला तो जरूर हेर ले कि कदे ने फिर यारी तारीफ है जरूर तुस होगी कर ले शो तो लेकिन फिलहाल यारे स्टूडियो तो असू होगी असो कॉल इंदे है था जरूर यारी फरमाइश जो असो है पूरी कर दे हिन शो तो लेकिन चल दिन और भोले शंकर जीरा ना लेना शो तो जहने मर्जी किया सो लिया हमेशा लिया और सिरा साथ यारा साथ हसुस होगी बुआ शो तो यारा आशीर्वाद हसुस होगी बुआ था इंसान कुछ भी किया सो कर ही सकता कुछ भी किया सो जर ही सकता है बहरहाल लेकिन चलते इन शो तो सभी जो इस प्यारे दे भजनारी किनारी ईशान भारद्वाज रहे नौ गीत और ईशान भाई बल्लो भी कर देती है मुझे कि सचिन कपूर जी मेरा गीत किया सो जरूर ब्रॉडकास्ट करे था ईशान भाई तुम्हारा गीत है बड़ी पहले ब्रॉडकास्ट किए तो करी थोड़ा लेकिन चलिए फिर एक मौके तुम्हारे बलने पर श्रृंगार ब्यूटीफुल पार्लर वाले के गीत होने है

0: शत एफ एम बैंड इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ पर वेरी गुंजन धर्मशाला दो है सभी ट्यून क्यूटर और एक कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव हुनु कर देन अपने वीडियो सेट में श्रृंगार ब्यूटी पार्लर री फरमाइश में है सभी ये गीत हुनु ईशान भारद्वाज री आवाज में बहरहाल इन अगले श्रोता भी असुओगे कनेक्टेड हिन पुस्त कौन बल्लू देन और कड़ी थम बल्लू कर देन नमस्ते जी माफ करा डिसकनेक्ट बुझ गया हिन दो वाली कॉल इन दिया था जरूर कनेक्ट कर लै ताहे दसो कर दे थी ये शो तो तुसो कि अक्सर ना जो जो मतलब थोड़ा करे नौजवान बल्ले सकते हैं और थोड़ा करे मतलब बुढ़ापे भी इन द अगले शो तक कनेक्टेड इन फिलहाल नमस्ते जी हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
1: सर जी नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: सर आप फोन भी नहीं उठा रहे थे इतनी देर से कर रहे थे हम आपको
0: अच्छा जी कौन बल्लू देन और कड़ी था बल्लू देन
1: हाँ कंडी को बल्लू रहता
0: हाँ तो अबे उन दस नो फोन फोन कितनी देर हम करूँ देन
1: दो आज के घंटे
0: अच्छा चलिए जी कंडी था क्या ना जी तुंदा
1: पंकज
0: क्या ना जी पंकज
1: अंकुश
0: अंकुश अंकुश जी किस क्लास में पढ़ दिन तो है सिक्स्थ मंच क्या बात है किस स्कूल पढ़ दिन
1: कंड बग्याड़ा
0: कंड बग्याड़ा कंडी था बल्लू हैं
1: कंडी हूँ बल्लू दूधा का रमदाईड़ी बग्याड़ा
0: अच्छा अच्छा अच्छा चलिए ता अंकुश जी कौन देने गीत होना तुसु
1: पंजाबी फाइले
0: ना जी गद्दी प्रोग्राम है ना तो पंजाबी ना बनाई सकते
1: गद्दी
0: है हाँ गद्दी है ना तो है गद्दी ना हाँ गद्दी का गीत होना था गद्दी होना पहाड़ी होना कांगड़ी होना हिमाचली होना सो होना ही ना सो और पंजाबी होना था तो है फिर थोड़ा रेड एफ एम वगैरह में करो कॉल
1: नहीं नहीं हिंदी बनाई दे मतलब गद्दी बनाई दे यार
0: अच्छा जी कुंडे ने होना गद्दी तुसु हाँ जी
1: गद्दी कोई गाय दिए तो हर आए थे ना
0: अच्छा तुसु हो गया और कौन आप जो है दसा
1: मुंगा गाना बताने में ये मेरे दोस्त ना
0: दोस्त ना अच्छा तुसु ये नंबर कौन मोड़ो और तुसु कि तेरे बारे में दसा कि नंबर कौन मोड़ो
1: नंबर दिता अकी बंदे
0: अकी बंदे दिता अच्छा क्या बोलू तीन ही बंदे
1: करने
0: दिता नंबर अच्छा करने दिता नंबर तो फिर क्या बोलू
1: बोलू गाना बड़े गैंड बंदे
0: तो है हम तो नगंदा गाना गैंड मुझे नहीं इंदा गैंड गाना गाना अच्छा कुंडे ने गीत गद्याली कोई भी गीत होना तुसु अपना भाई तूने टाइम ना बंदा था हेलो चलिए शो तो थोड़े करे बच्चों की मस्ती भी करना की ऐसो बहुत जरूरी है और ऐसो किसो की जानकारी रा पिटारा खोलना भी की ऐसो बहुत इंपॉर्टेंट है चलो है दसो कर दे थी तुसु श्रोतों की समय रा अभाव है फटाफट दसना पैना हाँ फल और सब्जी वे सेवन थो की ऐसो इन दा शरीर बिल्कुल ठीक रहता है स्वास्थ्य जो जरूरी है पौष्टिक आहार और पोषक तत्व और विटामिन री पूर्ति भूना श्रोतों ऐसा ही एक स्वादिष्ट फल हाँ कीवी शो तो जस जो कि ऐसो स्वास्थ्य वास्ते बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक हाँ शो तो कीवी में की शो तो सो बहुत सारी विटामिन सी विटामिन बी कैल्शियम फाइबर इस सब चीज़ के ना सो भुंदीन है ना और जितना क्या है मोमो रिप्लेटो पह घर चीन देन चौमिन रिप्लेटो पह घर चीन देन जो कि ऐसो सभी वास्ते के सो शरीर वास्ते बहुत नुकसानदायक है इवन कि असु सब भी हो पता भी हाँ कि ये नुकसानदायक है लेकिन फिर भी जड़ी 100 रुपये रे तुसु मोमोरी प्लेट खाई लेने हैं तड़ी 100 रुपये रे तुसु अगर चूर कीवी इंदे ना हकी डब्बे अंदर 100 रुपये रे चूर चूर कीवी बंदे देती अंदर ता अगर तू है 100 की भी खंदा है नशो तो हूँ तो है वह तू सो कितना फायदा बुना डायबिटीज तुंदे कंट्रोल बुझगाने या इम्यूनिटी तुंदे की या सो बढ़ने में इम्यूनिटी सिस्टम की या सो बढ़ने में कारगर की या सो भुने हाँ शो तो है ना कीवी वह सेवन करना कि ऐसो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ावे में काफ़ी सहायक बु सकता शोथों ठेरा मुख्य कारण विटामिन सी की विटामिन सी विटामिन में दसो दसु है ना विटामिन बी है दसु की थी अंदर की ऐसो लाभदायक बंदा तो जरूर कीवी की ऐसो जरूर खा आऊँ तो सलाह देना चाहता हूँ कीवी जरूर खा पर हाल इन श्रोता गण लगातार कॉल करूँ करते हैं जो मेरा आखिर आने रहा बंदा और आखिर बंदा था तथी आऊँ थोड़ा बी सी में कन्फ्यूज भी पूछ गंदा हा लेकिन फिलहाल कीवी खाने तो बड़े फायदे हैं शोता हूँ और कीवी जरूर खा शोता हूँ बहरहाल इन अगले श्रोता कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी। हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: जी। कौन बोल रहे ना?
1: पंकज।
0: फटाफट अपने फरमाइश दस दिया।
1: घर वाला घर हंडदा भोला साहब।
0: ठीक है नमस्ते जी जरूर पूरी कर ले। चलिए शतों ता जरूर खा और बरहाल कार्यक्रम जो हगो बड़न और फरमाइश रा दौर के सो काफ़ी ज़्यादा हा ये फरमाइशर दौर के सो पूरा कर दिन बने रहे तो सब तुंदे अपने वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी सो तो हाँ और सोगी सोगी मैं दसो थो कि बाल वास जो इन बाल मुंडा रे बाल होंगे तो वास्ते भी अच्छा बुंदा हा कि भी है ना हाई बीपी भी कंट्रोल किया सो करता हा कि भी सो तो और हकरी वास्ते भी किया सो खरा रहा हा कि भी इतने सारे फायदे 100 रुपये मंच चौर पीस मुल देन इतने सारे फायदे अगर कि भी थो बच्चू करते तो मोमो चाउमिन री प्लेट बर्गर री प्लेट छड़े करे इस फूड जो अगर तो ये खेंदे ने तो वाकई में तू सुस्ते गया असू सब भी वास्ते किया सो फायदेमंद था शो तो बहरहाल लेके चलते तू सब भी जो फरमाइश रही इस किनारी

चौथो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा और आऊँ सचिन कपूर नागा खोल कुंडिया और बिल्कुल जी इंद्रांग महाराज जी आशीर्वाद की है असु सभी पर भरपूर बने रहे श्रोतों और आऊँ तो हमेशा बोलूँ श्रोतों की अपने कर्म के असो जरूर खरे करे अपने काम के असो जरूर खरे करे श्रोतों ता सब कुछ खरे के असो जरूर बुंदा और तुम्हारी मर्जी रा भी कर खन करका कि असो जरूर बुंदा है।

सो तो दुई फरमाई शौर ने सो भी पूरी करनी नसू, लेकिन तथो पहले एक जानकारी है सो भी तुसु तक हसू जरूर पहुँचाने। हिमाचल प्रदेश में भंगरी खेती जो लेकर के सो लंबे समय तो चलो कर दी थी बहस सो तो, और बहस रे बिच की अब सरकार इति जो नियंत्रण और लाइसेंस आधारित उपयोग री राह के सो खोली देती है सो तो। कुल्लू क्षेत्र में भंगरी खेती जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थो जोड़ करे कपड़े हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद तैयार करने की योजना हासिल तो ठेरे औषधि उपयोग रे वास्ते भी के निर्धारित नियम रे तहत खेती भी खेती की सो कर सकते हैं। छोतों कुल्लू रे विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ये दसो छोतों की प्रदेश में भंगरी खेती खेती जो वैध बनाने वास्ते कानून बनाई छू रहा ठेरा, मतलब खुले तौर पर भांगरी खेती जो बढ़ावा देना नहीं है बल्कि खेती जो कानूनी दायरे लाइसेंस और सरकारी नियंत्रण में लेना हाशो तो। कुल्लू में टेक्सटाइल उद्योग री जरूरत जो ध्यान में रखते हुए ठेरी खेती भी संभावना तलाश के सो बुचू कर दे। बहरहाल मैं भी जोड़िए रे दो बोल तुंदे वीडियो सेट पर।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 FM। प्रस्तुत है आज का समाचार बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे।

सीबीएसई स्कूलों में बंद नहीं होंगे स्कूल कोर्स। 22 नवंबर से होगी हिमाचल टीईटी। 5,659 बिजली बोर्ड पेंशनरों को मिलेगा पूरा एरियर।

जलवायु परिवर्तन से बदल रहा नदियों का मिजाज, पुलिस अधिकारियों की मोबाइल से लगेगी हाजिरी, बीपीएल सूची से अलग होगी परिवार पहचान प्रक्रिया, इको टूरिज्म में बेहतर काम करने वाले वन मंडल होंगे सम्मानित।

0: अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में स्कूल कोर्स बंद करने की योजना नहीं है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि विद्यार्थियों को आधुनिक और रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए नए विषयों को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। प्लम्बिंग और सिक्योरिटी जैसे विषयों को शुरू करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई है। विभाग का मानना है कि स्कूली शिक्षा में व्यावहारिक कौशल को शामिल करने से विद्यार्थियों को आगे रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा विभाग ने सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ व्यावहारिक कौशल उपलब्ध करवाने की दिशा में काम करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड नवंबर और दिसंबर में अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक टीईटी परीक्षा आयोजित होगी। अभ्यर्थी 11 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड के अनुसार टीईटी में विभिन्न विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद परीक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी बोर्ड की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के हजारों पेंशनरों के लिए राहत की खबर है। वर्ष 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए 5,659 पेंशनरों को संशोधित पेंशन का पूरा एरियर देने का निर्णय लिया गया है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने संशोधित पेंशन का बचा हुआ 100% एरियर जारी करने की अधिसूचना जारी की है। इससे उन पेंशनरों को राहत मिलेगी जिन्हें संशोधित पेंशन का पूरा बकाया अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। बोर्ड की ओर से संबंधित प्रक्रिया के तहत पेंशनरों को भुगतान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों की नदियों पर जलवायु परिवर्तन का असर सामने आ रहा है। अध्ययनों में ग्लेशियरों के पिघलने, तापमान में बढ़ोतरी और नदियों के जल प्रवाह में बदलाव से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ग्लेशियरों में लगातार बदलाव का असर भविष्य में पानी की उपलब्धता, कृषि और पर्यावरण पर पड़ सकता है। हिमालयी क्षेत्र में जल संसाधनों को सुरक्षित रखने और बदलते पर्यावरण की निगरानी को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में डिजिटल व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। अब अधिकारियों की हाजिरी मोबाइल के माध्यम से दर्ज होगी। हिम उपस्थिति ऐप में इन आउट पंच अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी उपस्थिति दर्ज करें। साथ ही डेस्कटॉप पोर्टल के माध्यम से अटेंडेंस दर्ज करने की व्यवस्था पर रोक लगाई गई है। विभाग का उद्देश्य उपस्थिति व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की पहचान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। सरकार के अनुसार परिवार पहचान की प्रक्रिया में अब बीपीएल सूची को आधार नहीं बनाया जाएगा। पात्र परिवारों की पहचान निर्धारित प्रक्रिया के सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल किसी परिवार के बीपीएल सूची में शामिल होने या न होने से उसे योजना का लाभ स्वतः नहीं मिलेगा। पात्रता का निर्धारण संबंधित नियमों के अनुसार किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य परिवार पहचान प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और अलग व्यवस्था के रूप में लागू करना है। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने नई पहल की है। इको टूरिज्म में बेहतर कार्य करने वाले वन मंडलों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही रेस्ट हाउस, इको टूरिज्म साइट्स और पार्कों के बेहतर रखरखाव पर भी जोर दिया जा रहा है। विभाग स्थानीय लोगों और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में भी काम कर रहा है। सरकार का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इसका लाभ मिल सके। शाहपुर के विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुर्गेला में शाहपुर जोन की 3 दिवसीय अंडर-19 खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में शाहपुर जोन के 22 स्कूलों के 357 छात्र भाग ले रहे हैं। इस दौरान खिलाड़ी वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी और शतरंज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अपने संबोधन में केवल सिंह पठानिया ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में खेलों का विशेष महत्व है। खेल बच्चों में अनुशासन, टीम भावना और आपसी भाईचारे की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि कर खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए चंबी खेल मैदान को विकसित किया जा रहा है, जिस पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशे के कारोबार से करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को अब अपनी आय का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि नशा बेचकर आलीशान कोठियां, होटल और दुकानें बनाई गई हैं, जमीन और महंगी गाड़ियां खरीदी गई। उन्होंने कहा कि यह पैसा और संपत्ति गरीबों और उन परिवारों की है जिनके बच्चे नशे के जाल में फंसाए गए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और लगभग 3.27 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के लिए नूरपुर पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ निर्णायक जंग जारी है और नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों की कमाई का हर रुपया अब जनता का होगा। उन्होंने कहा कि नशे की कमाई से बनाई गई संपत्ति वास्तव में उन परिवारों की कीमत पर अर्जित होती है जिनके बच्चे इस गंभीर सामाजिक बुराई का शिकार हो जाते हैं। नूरपुर में जब्त की गई संपत्तियों में आलीशान कोठी, भूमि, होटल, दुकानें, वाहन और बैंक खाते शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य नशे के पूरे नेटवर्क, उसकी आर्थिक व्यवस्था और उससे अर्जित अवैध संपत्ति को पूरी तरह ध्वस्त करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस दिशा में पूरी स्वतंत्रता दी गई है तथा उन्हें राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है। आप सुन रहे थे रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 FM का समाचार बुलेटिन। धन्यवाद।
1: बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम लेकर मैं सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ, गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए जी आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी हमारे साथ इस सुर की ट्रेन में जो है वो बैठे हुए हैं, और ये सुरों की ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हम सफर की तरह इसमें यूं ही आनंद लेते रहिए गीतों का।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है वेणी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को होस्ट कर रहा हूँ और ये प्यारे प्यारे से नगमे आपके बीच आपकी उस ट्रेन में रख रहा हूँ। आइए इसी के साथ लेके चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ। यूं ही बने रहिएगा और हम इसी तरह से आपके दिल को खुश करने की गीतों की ये डोर यूं ही चलती चलेगी श्रोताओं, जब तक आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का आनंद आप सभी ले रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।

रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम 91.2 एफएम पर सुन रहे हैं। बिल्कुल, नाम है कार्यक्रम का गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए इसी तरह से आनंद लेते चलते हैं नए पुराने गीतों का और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा एक और गीत। ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ रेडियो जो कि सचिन कपूर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, ये कार्यक्रम यूं ही महकता रहेगा आपके घर पर, आपकी गाड़ियों में, आपके खेतों में और जहां जहां भी आप सभी ने इस समय 91.2 FM ट्यून किया है, वहां वहां ये कार्यक्रम की गूंज यूं ही गूंजती रहेगी।

0: रूही, क्या है? क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आजा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय

FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जॉकी सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोता गण का, जितने भी गणमान्य व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने इस कार्यक्रम में, गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो कैसी है धर्मशाला की शाम? बहुत प्यारी, बहुत मज़ेदार, बहुत हसीन और खुशनुमा है ना जी। प्यारी सी शाम जो है वो धर्मशाला की रहती है श्रोतों, जैसे कि हम सभी बाखूबी जानते हैं। और धर्मशाला मेनली तो श्रोतों मौसम क्लाइमेट को लेकर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है श्रोतों वो फेमस है ना। मेनली यहाँ पर क्लाइमेट ही तो है, ये इतनी गर्मी में भी हमें ठंड का एहसास जो करवाता है वो धर्मशाला करवाता है श्रोतों। तो श्रोतों हम बताना चाहते हैं, इस समय जो है वो लगभग 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है वो तापमान बना हुआ है। हल्की बारिश जो है वो हो रही थी श्रोतों, लेकिन अभी मौसम जो है वो पूरी तरीके से साफ़ है श्रोतों। और बताना चाहते हैं श्रोतों, हाँ जी बिल्कुल, मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। कल भी जो है वो अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा, हल्की बारिश जो है वो कल भी रहेगी श्रोतों। आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को मैं होस्ट कर रहा हूं और हम साथ साथ रहेंगे। आइए जी आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोतों, ये वहाँ वेड़ी गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी चौकी सचिन कपूर। एक बार पुनः स्वागत है। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अमूमन अक्सर श्रोतों लाइफ में जो है वो ये नहीं कह सकते कि एक ही समय में वो स्टेज आती है। वो स्टेज लाइफ में कभी भी आ सकती है, कभी भी जो है वो पैर डगमगा सकते हैं श्रोतों, लड़खड़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि ज़िंदगी में लड़खड़ाना भी ज़रूरी है, डगमगाना भी ज़रूरी है। देखिए, और कुछ मिले ना मिले, अनुभव जो है वो ज़रूर मिलता है ना। शिकायतें अक्सर रहती हैं हमें ज़िंदगी से कि हमें ज़िंदगी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। लेकिन हमेशा हम शिकायतें ही क्यों करते हैं ज़िंदगी से श्रोतों? कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हमें क्या क्या मिला है, जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। तो शिकायतें करना थोड़ा कम कीजिए ज़िंदगी से, और जो है उसमें खुश रहना जो है वो सीखिए श्रोतों। उसमें खुशी ढूंढना जो है वो ज़रूर सीखिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहरहाल, आप सभी बने हुए समय रेडी गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं सचिन कपूर हूँ, आप सभी सुन रहे हैं हमें। श्रोतों, कहते हैं ना कि शब्दों का भी जो है श्रोतों, वो अपना एक स्वाद होता है ना। आप बोलने से पहले उन्हें चख लें, अगर खुद को अच्छे ना लगें तो दूसरों को मत परोसे। बहुत बिहेवियर एंड रिलेशनशिप के बीच में, ये व्यवहार और रिश्ते के बीच में एक ये लाइन जोड़ी गई है श्रोतों की, शब्दों को जो है वो पहले खुद चख लें, है ना। और स्वाद ना लगे तो किसी और को ना परोसे, यानी कि आप अपने वाणी पर जो है वो विशेष ध्यान दें। जब भी आप किसी से बात करते हैं श्रोतों, तो अपनी वाणी पर जो है वो विशेष ध्यान ज़रूर देना चाहिए। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ। चलिए, कस्में खाली हैं, अब कस्मों के बाद लेके चलेंगे आप सभी को।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। तो आइए जी, सेहत वो पंजाबी में एक कहावत है ना श्रोतो, आप सभी ने सुनी भी जरूर होगी कि बाकी दे कम बाच पहला सेहत जरूरी है, बाकी दे कम बाच पहला सेहत जरूरी है। हाँ, तो सेहत जो है वो वाकई में बहुत ज़रूरी है श्रोतो। और इसी बीच रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अपनी सेहत का ध्यान मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं रख पाते हैं। हाँ, अमूमन ऐसा होता है ना, अक्सर ऐसा होता है कि हम वो ख्याल जो है वो नहीं रख पाते हैं, वो समझदारी जो है वो हम अपने लिए नहीं दिखा पाते हैं, कहीं ना कहीं वो गलती जो है वो हमसे ज़रूर हो जाती है, वो चूक जो है वो हमसे ज़रूर होती है खुद के लिए। शो तो बेशक हम परिवार में किसी और का ध्यान जो है वो बखूबी रखें, लेकिन खुद का ध्यान रखने में कहीं ना कहीं हम वो चूक जो है वो ज़रूर कर लेते हैं श्रोतो। तो देखिए, सेहत के लिए फ़ायदेमंद कीवी भी बहुत है, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत हैं, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा श्रोतो। सेहत के लिए ड्राई फ्रूट्स और नट्स हमेशा जो है वो सुपर फूड्स माने जाते हैं। इस शरीर को एनर्जी देने के लिए, एनर्जी देने के साथ साथ कई बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं श्रोतों। इनमें हेल्दी फैट, प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, फाइबर और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट रोज़ाना ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप इनका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं श्रोतो। जी बिल्कुल, कभी आपने सुना था कि ड्राई फ्रूट्स नुकसानदायक होंगे? हाँ, हो सकते हैं अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं श्रोतो। ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे सेहतमंद आहार का हिस्सा माने जाते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में खाने से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है और शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं श्रोतो। लेकिन किसी भी अच्छी चीज़ की तरह ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खाने से कैलोरी बढ़ने के साथ साथ लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं भी जो हैं, परेशानियां भी जो हैं वो हो सकती हैं श्रोतों। जी बिल्कुल, क्या क्या हो सकती हैं ये हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे श्रोतों। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ ही।

बहुत प्यारा संगीत आप सभी ने सुना 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में, और श्रोतो सुन बेलिया सुन माहिया। तो चलिए फिलहाल हम आपको सुना रहे हैं कि ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो खाने से आपको नुकसान भी पहुंच सकता है, बता रहे हैं श्रोतों। देखिए ड्राई फ्रूट्स में पानी की मात्रा कम होने के कारण जो है वो उनमें पोषक तत्व और जो कैलोरी अपेक्षाकृत अधिक केंद्रित होती हैं श्रोतों, और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स रोज़ाना खाने पर जो है वो अनजाने में कैलोरी की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। अगर आपकी शारीरिक गतिविधियां कम हैं तो लंबे समय तक ऐसा करने से वज़न जो है वो बढ़ने का जोखिम हो सकता है श्रोतों। पेट में हो सकती है परेशानी, ड्राई फ्रूट्स में मौजूद फाइबर पाचन के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में फाइबर लेने से कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना, है ना, कब्ज जैसी समस्याएं जो हैं वो हो सकती है श्रोतों। खासकर किशमिश सूखे जो किशमिश होते हैं श्रोतों, है ना, फलों का ज़्यादा सेवन पेट पर भी जो है वो भारी पड़ सकता है श्रोतों। इसलिए अगर आपकी डाइट में पहले से फाइबर की मात्रा ज़्यादा है तो ड्राई फ्रूट्स की मात्रा धीरे धीरे जो है वो बढ़ाना बेहतर होता है श्रोतों। ब्लड शुगर पर भी जो है वो श्रोतों पड़ सकता है असर। सूखे फलों में प्राकृतिक शुगर होती है और इनमें पानी कम होने के कारण थोड़ी मात्रा में भी शुगर अपेक्षाकृत अधिक मिल सकती है, इसलिए डायबिटीज़ या ब्लड शुगर की समस्या वाले लोगों को ड्राई फ्रूट्स खाते समय मात्रा का जो है वो विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी कि कितने आप ड्राई फ्रूट्स जो है वो कितनी मात्रा में ले रहे हैं ये आपको जो है वो विशेष ध्यान रखना चाहिए श्रोतों। नमकीन ड्राई फ्रूट्स से बढ़ सकता है सोडियम। जी बिल्कुल, बाज़ार में मिलने वाले कई ड्राई फ्रूट्स श्रोतों भुने हुए या नमकीन होते हैं। ऐसे उत्पादों का नियमित और ज़्यादा सेवन आपकी कुल सोडियम खपत बढ़ा सकता है श्रोतों, इसलिए बिना नमक वाले मेवे को प्राथमिकता देना बेहतर विकल्प है। जिनको एलर्जी होती है श्रोतों उनको रहना चाहिए सावधान। कुछ लोगों को नट्स जैसे बादाम, काजू, अखरोट या पिस्ता से एलर्जी हो सकती है श्रोतों। ऐसे लोगों में ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद खुजली, त्वचा में जो है श्रोतों वो चिकते होंठ या चेहरे पर जो है वो सूजन, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं श्रोतों। तो एलर्जी के लक्षण गंभीर हों तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए श्रोतों। अब आपके मन में, जहन में, दिल में, दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि कितने ड्राई फ्रूट्स जो है वो खाना सही है। तो देखिए आमतौर पर हम सभी जानते भी हैं ड्राई फ्रूट्स की सही मात्रा व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य, कैलोरी ज़रूरत और पूरी डाइट पर जो है वो निर्भर करती है। आमतौर पर एक छोटी मुट्ठी लगभग 25 से 30 ग्राम नट्स रोज़ाना कई स्वास्थ्य जो लोग होते हैं वो ले लेते हैं श्रोतों। सबसे ज़रूरी बात है ड्राई फ्रूट्स को संतुलित डाइट का हिस्सा बनाएं, ना कि भोजन का विकल्प। बिना नमक वाले नट्स चुने मेवे को सीमित मात्रा में शामिल करें और पर्याप्त पानी पिए श्रोतों। अगर आपको डायबिटीज़, किडनी की बीमारी, नट एलर्जी या कोई अन्य विशेष स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो अपनी डाइट पर बदलाव से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना जो है वो बेहतर समझे और ज़रूर लें श्रोतों। तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने से जो है वो नुकसानदायक है। हमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स अगर हम खाते हैं तो वो नुकसानदायक है, और हमने आपको कुछ एक चीज़ें जो हैं वो बताने की कोशिश ज़रूर की है श्रोतों। तो चलिए कार्यक्रम को हम अब आगे बढ़ाएंगे और लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को इस चमकते गीत की ओर।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना वेड़ी गुंजन धर्मशाला और ये नाची सचिन कपूर इस समय कार्यक्रम को होस्ट कर रहा है। शोतो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशे के कारोबार से करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को अब अपनी आय का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि नशा बेचकर आलीशान कोठियां, होटल और दुकानें बनाई गई हैं, जमीन और महंगी गाड़ियां खरीदी गई। उन्होंने कहा कि ये पैसा और संपत्ति गरीबों और उन परिवारों की है जिनके बच्चे नशे के जाल में फंसाए गए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और लगभग 3.27 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के लिए जो है वो नूरपुर पुलिस को जो है वो बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जी बिल्कुल श्रोता हूँ, ये जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे कि उन्होंने क्या कहा, प्रदेश सरकार द्वारा क्या हुआ है, प्रदेश सरकार द्वारा ये जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। जी उन्होंने कहा श्रोताओं, ये पैसा और संपत्ति गरीबों और उन परिवारों की है जिनके बच्चे जो है वो नशे में फंसाए गए हैं। श्रोताओं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशे तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है श्रोताओं, और बताना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ निर्णायक जंग जारी है और नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। श्रोताओं, उन्होंने कहा कि नशा तस्करों की कमाई का हर रुपये अब जनता का होगा, नशे की कमाई से बनाई गई संपत्तियाँ वास्तव में उन परिवारों की कीमत पर अर्जित हैं जिनके बच्चे इस गंभीर सामाजिक बुराई का शिकार हो जाते हैं। नूरपुर से जब्त की गई संपत्तियों में आलीशान कोठी, भूमि, होटल, दुकान, वाहन और बैंक खाते शामिल हैं। यहां कार्रवाई नशा माफिया के लिए जो है वो स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, सरकार का लक्ष्य नशे के पूरे नेटवर्क, उसकी आर्थिक व्यवस्था और उससे अर्जित अवैध संपत्ति को पूरी तरह ध्वस्त करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस और कानून एजेंसियों को इस दिशा में पूरी स्वतंत्रता दी गई है तथा उन्हें राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है। पुलिस जिला नूरपुर में अब तक 17 मामलों में 29.95 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ये नशा माफिया के विरुद्ध प्रदेश सरकार की सख्त नीति और पुलिस की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और इसे नशे की गिरफ्त में फंसाने के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। श्रोताओं, राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए नशे के कारोबार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और पूरे नेटवर्क के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद PIT NDPS कानून को लागू कर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया है। आम जनता से भी अपील की, नशे के कारोबार से संबंधित किसी भी सूचना को पुलिस के साथ साझा करें ताकि समाज को इस गंभीर बुराई से मुक्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ नशे तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर तक नशा माफिया की मैपिंग की गई है और नशा तस्करी के कारोबार से जुड़े लोगों तथा उनके नेटवर्क के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ लड़ाई का प्रतिबद्धता के साथ जारी रखेगी। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं RJ सचिन कपूर के साथ, यूं ही चलता रहेगा ये कार्यक्रम। अभी फ़िलहाल सोया तो नहीं है, ये जहां सो गया है आसमां अभी तो नहीं सोया है, लेकिन फ़िलहाल हम इस गीत का आनंद लेते हैं।

शोतो एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय बिल्कुल चला हुआ है। शोतो गुड इवनिंग धर्मशाला, पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम में। हाइये लेके चलते हैं शोतो अगली जानकारी की ओर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि हिमालय केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और प्राकृतिक जीवन व्यवस्था का आधार है। हिमालय हमारी पहचान, विरासत और जिम्मेदारी है। इसके संरक्षण को केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित न रखकर जन आंदोलन का स्वरूप देना होगा, तभी हिमालय संरक्षण के साथ राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूती मिलेगी। राज्यपाल शनिवार को धर्मशाला में हिमालय परिवार हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हिमालय संरक्षण से राष्ट्र निर्माण की ओर विषयक एक दिवसीय जो है श्रोतों भावी रणनीति संगोष्ठी तथा पुस्तक विमोचन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल से निकलने वाली नदियां देश के विशाल भूभाग को जीवन प्रदान करती हैं। यहाँ की जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान, लोक संस्कृति और प्राकृतिक संसाधन अमूल्य धरोहर हैं। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, जल स्रोतों का संकट और भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाएं हिमालय के संवेदनशीलता की गंभीरता चेतावनी दे रही है श्रोताओं। ऐसे में विकास और पर्यावरण के बीच संघर्ष के बजाय दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना समय की आवश्यकता है। बहुत बड़ी लाइन ये कही है उन्होंने। राज्यपाल ने हाल ही में नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमालय क्षेत्र की संवेदनशीलता को समझते हुए वैज्ञानिक अध्ययन, समयवृद्ध पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रबंधन की तैयारी तथा स्थानीय समुदाय के प्रशिक्षण को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्रोतों, पर्यावरण रूप से संवेदनशील विकास की दिशा में सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में आई आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति सभी की संवेदनाएं हैं। ऐसे घटनाएं हमें ये याद दिलाती है कि हिमालय का संरक्षण केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं बल्कि मानव जीवन, क्षेत्रीय सुरक्षा और संपूर्ण समाज के भविष्य से जुड़ा विषय है। श्रोतों, यदि कोई युवा एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करता है, कोई गांव अपने जल स्रोत को पुनर्जीवित करता है, नागरिक प्रदूषण रोकने में सहयोग करता है अथवा समुदाय अपनी लोक संस्कृति और विकास को सुरक्षित रखते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास मिलकर हिमालय संरक्षण और राष्ट्र निर्माण की बड़ी शक्ति बन सकते हैं। श्रोतों, कविंदर गुप्ता ने कहा, श्रोतों उन्होंने कहा कि हिमालय परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वृक्ष संरक्षण, जल स्रोत का पूर्ण जीवन, आपदा प्रबंधन, सांस्कृतिक संरक्षण, युवा नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता जैसी विषय को एक साथ जोड़कर कार्य करना समग्र एवं संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्रोतों, जानकारियों का सिलसिला, जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर। सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं।

चलिए शो, तो आप सभी ने भी सोच समझ कर ही जो है वो प्यार किया होगा, है ना। सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, तो सोच समझ कर जो है वो प्यार करना बहुत ज़रूरी है, सोच समझ कर बोलना बहुत ज़रूरी है, सोच समझ कर लिखना बहुत ज़रूरी है, और सोच समझ कर ज़िंदगी व्यतीत करना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। सोच समझ कर रिश्ते बनाना बहुत ज़रूरी है, सोच समझ कर कहना बहुत ज़रूरी है श्रोतों, सोच समझ कर किसी के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल श्रोतों, आपसे ठीक 2 मिनट बाद यानी कि पूरे 7 बजे जो है वो आप सुनेंगे समाचार। आप सभी यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ, और समाचार के बाद श्रोतों हम आपको बताएंगे फ़ायदे किसके, कीवी के। जी बिल्कुल, कीवी के फ़ायदे जो है वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे श्रोताओं, क्योंकि

0: में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रॉइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। ब्रिक्स देशों ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सभी तरह के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिक्स नेताओं ने पौधारोपण किया। उन्होंने इंडिया इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुँचाना है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों को बेहतर सेवा मिलेगी। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.85 किलोमीटर लंबी ये सड़क स्वदेशी तकनीक के व्यापक प्रयोग को दिखाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहल कचरे से

पुख्ता बनाने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोची में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं नाचीज सचिन कपूर इस समय कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूँ। अश्वतो डांडा हॉस्पिटल की जो है वो बहुत सारी इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स बनाकर जो है वो वायरल हो रही हैं श्रोतो, कि वहाँ पर जो है वो छोटे छोटे चाहे वो आप ग्लव्स की बात कर लीजिए, चाहे वो आप सिरिंज की बात कर लीजिए, सुई की बात कर लीजिए श्रोताओं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी मेडिसिन जो हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये आम जनता के लिए बहुत परेशानी वाला दौर है, ये आम जनता के लिए काफ़ी दिक्कत वाला दौर है। और देखिए मुझे ये सुनने में आया, क्योंकि हमारे भी बहुत से लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं अदर कंट्रीज़ में, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ वो फैसिलिटी जो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल देता है वैसी फैसिलिटी जो है वो इंडिया में प्राइवेट वाली भी नहीं है, प्राइवेट वाले भी नहीं देते हैं। तो मतलब हम ये एक्सेप्ट तो नहीं कर पा रहे हैं कि उस तरह की फैसिलिटी हो, लेकिन एटलीस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो तो पूरी हो सकती हैं, ग्लव्स से लेके सिरिंज से लेके PCM से लेके, है ना, वायरल हो रही हैं वीडियो नो डाउट। तो इन चीज़ों का ध्यान जो है वो ज़रूर रखना चाहिए सरकार को श्रोतो। बहरहाल कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस गीत की ओर। तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहे गीत ये ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन ये चांद कोई दीवाना नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल यही गीत सुनेंगे आप।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे सचिन कपूर। स्वागत है जी एक बार पुनः आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो आइए कार्यक्रम को फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं श्रोतो, और अब हम आपको बताएंगे फायदेमंद है कीवी। जी बिल्कुल, फल और सब्जियों के सेवन से स्वास्थ्य को ज़रूर पोषक तत्व और विटामिन की पूर्ति होती है, विटामिन की पूर्ति जो है वो होती है श्रोतों। ऐसा ही एक स्वादिष्ट फल है कीवी, जिसे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। कीवी में श्रोतों, जैसे कि हम जानते हैं, विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारी जो है वो चीज़ें रहती है श्रोतों, है ना। तो हमारी कीवी जो है वो पोषक तत्व कीवी में जो है श्रोतों वो पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से कई गंभीर बीमारियों से जो है वो रिकवरी करने में बहुत फ़ायदेमंद मिलता है। आइए जानते हैं कीवी किस तरह से स्वास्थ्य को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है। देखिए, डायबिटीज़ करती है सबसे पहले तो कंट्रोल। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कीवी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है श्रोतों। कीवी में मौजूदा गुण डायबिटीज़ के मरीज़ों में जो है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद माने जाते हैं। डायबिटीज़ के मरीज डॉक्टर की सलाह लेकर रोज़ाना कीवी का सेवन कर सकते हैं, इससे उनका पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है श्रोतों। साथ ही साथ कीवी के सेवन से शरीर में खून का जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का जो जमने की जो दिक्कत रहती है श्रोतों, है ना, जमने की दिक्कत भी जो है वो जो रहती है, तो अगर आप इसका सेवन करेंगे तो वो भी दिक्कत ख़त्म होगी श्रोतों। जी बिल्कुल, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है बिल्कुल। कीवी का सेवन करने से आपकी वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी सहायक हो सकती है श्रोतों। इसका प्रमुख कारण इसमें मौजूदा विटामिन सी की जो है वो प्रचुर मात्रा होती है। कीवी में विटामिन सी के साथ जो है वो श्रोतों एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं श्रोतों, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ कई प्रकार के रोग से आपकी सुरक्षा करते हैं। कीवी का नियमित सेवन अस्थमा के लक्षणों को भी कम करता है श्रोतों। ये पूरी जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए लेते हैं इस गीत का आनंद आपके रेडियो सेट पर।

देखकर आज कल लिख रहा हूँ शुरू। ऐसा ऐसा ज़रूर हुआ होगा ज़रूर हुआ होगा श्रोतम। कुमार शानू की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत था श्रोतम, और करिश्मा कपूर और गोविंदा ने इसमें स्टार कास्टिंग जो है वो की थी श्रोतम। स्टार कास्ट जो है वो गोविंदा और करिश्मा कपूर रहे श्रोतम इस मूवी में, और काफ़ी ज़्यादा बहुत प्यारी प्यारी सी ये मूवी है श्रोतम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फ़ायदेमंद कीवी के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे श्रोताओं। देखिए, कब्ज़ को दूर करें, कीवी कब्ज़ को दूर करने में काफ़ी मदद जो है वो करती है। इसके सेवन से पुरानी कब्ज़ भी जो है वो ठीक होने लगती है श्रोताओं। ये गैस, एसिडिटी, अपच जैसी पेट की दिक्कत को भी जो है वो दूर करती है। अगर आप कब्ज़ से परेशान हैं तो कीवी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये पेट साफ करने में भी मददगार जो है वो साबित होती है श्रोतम। हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है श्रोतम, क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन जो है वो श्रोतम यू

युवा से युवा, नौजवान से नौजवान जो है वो कभी हार्ट अटैक के कारण जो है वो उस दुनिया को छोड़ छोड़ दे रहे हैं, कभी है ना इस तरह के कारण जो है वो आ रहे हैं श्रोतों। तो कीवी हार्ट के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। कीवी में जो है वो श्रोतों मैग्नीशियम और पोटाशियम पर्याप्त मात्रा में होता है श्रोतों। इसका सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करने में मदद मिलती है। कीवी खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी जो है वो संतुलित रहता है। बालों के लिए भी अच्छी होती है श्रोतों। कीवी में पाए जाने वाले पोषक तत्व विटामिन सी और ई बालों को झड़ने को कम करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है श्रोतों। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और जिंक भी मौजूद होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है और बालों की ग्रोथ बढ़ाता है श्रोतों। कीवी के बीज में जो है वो 3 फैटी एसिड जो है वो पाए जाते हैं श्रोतों। ये भी बालों को जो है वो बढ़ाने में मदद करते हैं। हाई बीपी रहता है श्रोतों कंट्रोल में, बीपी में हाई बीपी जो है वो भी कंट्रोल रखता है कीवी। तो देखिए इतने सारे फायदे हैं श्रोतों, है ना। आँखों के लिए भी अच्छा होता है सोचिए इतने सारे अगर फायदे हैं तो क्यों ना कीवी खाएं, और क्यों हम 100 रुपये की जो है वो मोमो की प्लेट की जगह 100 रुपये का कीवी क्यों नहीं खा लेते श्रोतों, है ना। तो बहुत फायदेमंद है अगर आप सभी जो है कीवी खाते हैं तो इतने सारे फायदे जो है वो आपको होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए बाजार और खरीद लीजिए कीवी, जो कि इतने सारे फायदे जो है वो आपको दे रही है। मोमो चाउमीन खाने से, जंक फूड खाने से श्रोतों आप खुद परेशान अभी तो नहीं होंगे लेकिन कुछ टाइम बाद ज़रूर होंगे। सो ड्राई फ्रूट्स, कीवी, सेहतमंद चीज़ें खाइए, क्योंकि बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है, बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला पर सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतों। और अब आपको लेके चलते हैं श्रोतों, अब वक्त हो गया है रेडी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का और मिलते हैं श्रोतों अंतराल के बाद।

0: अभी क्या है?
1: क्या है ये?
2: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
3: एक नई आदत अपनाते हैं, जब तक डस्टबिन ना मिले
2: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते हैं।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया, मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

पार्वती के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीबी जैसा बनता जा रहा है?

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और इस छोटे से अंतराल के बाद हम आपको लेके चलेंगे इस प्यारे से गीत

0: शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ। और श्रोतो 7:45 हो चुके हैं, अब वक्त हो चुका है वेडी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण के लिए भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है और ये शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
1: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में बहुमूल्य योगदान, रचनात्मक भावना और प्रतिबद्धता के लिए नेताओं के प्रति आभार जताया। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिमालय संरक्षण को सरकारी प्रयासों तक सीमित न रखकर इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि हिमालय संरक्षण के साथ ही राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूती मिलेगी। धर्मशाला में आज एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि हिमालय का संरक्षण केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं बल्कि मानव जीवन, क्षेत्रीय सुरक्षा और संपूर्ण समाज के भविष्य से जुड़ा विषय है।
3: हिमालयस को लेकर के हमारी चिंता है, हम खुद समझ सकते हैं कि क्लाइमेट कंट्रोल कितना जरूरी है। आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हमें बार बार अलार्म कर रही है। वो भी हमने नेपाल की त्रासदी देखी है, इससे पहले पिछले गत वर्षों में हिमाचल में भी बहुत कुछ हुआ, केदारनाथ की त्रासदी हमने देखी है। कहीं ना कहीं जब हिमालय से छेड़छाड़ होती है तो जल स्रोत जो हमारे जीवन रेखा है वो प्रलय का रूप धारण कर लेते हैं। ये जरूरी है कि इस प्रकार की जो संगठन है विशेष करके इसके बारे में सोचे। हमारी जो जीव विविधता है या दूसरी है जो हिमालय की, किस प्रकार से संरक्षण करना है, जल स्रोतों को कैसे बचाना, ये सभी चिंता का विषय है।
1: प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं और आम नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। संगोष्ठी के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाती है। वे आज सोलन जिले में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। रोहित ठाकुर ने युवाओं से अपने कौशल के माध्यम से देश के लिए कुछ नया करने, रोजगार के अवसर सृजित करने और विकास में अपना योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने और उन्हें रोजगार के सीधे अवसर उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दीक्षांत समारोह में कुल 1047 विद्यार्थियों को उपाधि सहित 4 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि नशे के कारोबार के खिलाफ सरकार की निर्णायक जंग जारी है और नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। उन्होंने आज शिमला में बताया कि सरकार की कार्रवाई केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है। सरकार का लक्ष्य नशे के पूरे नेटवर्क, उसकी आर्थिक व्यवस्था और इससे अर्जित अवैध संपत्ति को पूरी तरह ध्वस्त करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस दिशा में पूरी स्वतंत्रता दी गई है और सरकार उन्हें हर संभव सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और इसे नशे की गिरफ्त में फंसाने के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने AI सहित नई प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने पर बल दिया है। जापान के टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में उपमिशन प्रमुख R मधुसूदन से एक भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को जापान की तकनीकी दक्षता, कौशल विकास और नवाचार से जोड़ने की अपार संभावनाएं हैं। धर्माणी ने कहा कि इस पहल से विद्यार्थियों और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, प्रशिक्षण व रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
4: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
5: घबराए नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
4: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
1: शेष समाचारों में, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ऊना जिले के हरोली क्षेत्र को खेलों के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। हरोली में आज एक खेल प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है और इंडोर स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली महाविद्यालय के दूसरे भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को नई पहचान व नई दिशा मिली है। मंडी जिले के बालीचौकी में आज खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से प्रतिभावान खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं और देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने का काम हुआ है। जयराम ठाकुर ने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया है।
7: मैं आप सबसे इस बात के लिए खासतौर से कह रहा हूँ कि आगे बढ़ो। अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी अवेल करने में अगर कोई कमी रहेगी तो उसमें और किसी का दोष नहीं, वो हमारा ही दोष है। और आज की इस खेलकूद प्रतियोगिता में मैं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। आप खेल भावना के साथ खेलेंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और मैं ये भी कहूंगा कि आप निश्चित रूप से पढ़ाई के क्षेत्र में भी अच्छा करें, खेलकूद के प्रतियोगिता में भी अच्छा करें। जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होता है वो पढ़ाई में भी अच्छा होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
1: प्रदेश के सभी न्यायालयों में प्री लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में विभिन्न मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। शिमला के जिला व सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि आज 145 बेंचों के समक्ष 1,46,825 मामले उठाए गए, जिनमें से 1,11,219 मामलों का निपटारा किया गया है। शिमला में कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने के मामले में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति 15 सितंबर को सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। समिति के पदाधिकारियों ने शिमला में कहा कि रोबोटिक सर्जरी की आड़ में सरकार इस ऐतिहासिक अस्पताल को नष्ट करने पर तुली हुई है। समिति के सचिव फालमा चौहान ने बताया कि कमला नेहरू अस्पताल को बचाने के लिए प्रदेश भर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसे जनता का भरपूर समर्थन मिला है।
8: हम लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, 1,00,000 से ज्यादा सिग्नेचर जो अभी तक हम लोगों ने करवाए हैं और 15 सितंबर को हम ये जो सिग्नेचर है ये हम प्रदेश की सरकार को जो है सबमिट करेंगे और उसके साथ साथ हमारा जो मेमोरेंडम होगा उस दिन हम लोग सरकार को मिलेंगे। लोगों से, शिमला की जनता से ये अपील करते हैं कि 15 सितंबर को आप इस कमला नेहरू अस्पताल को बचाने के लिए भारी मात्रा में इस मुहिम में जुड़े।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिमालय संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करेगी सरकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को मिली नई पहचान और राष्ट्रीय लोक अदालत में आज प्रदेश भर में 1,11,000 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार,
0: धन्यवाद मोहतरमा इस प्यारे से बुलेटिन को देने के लिए। आप सभी सुन रहे हैं समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। श्रोतों, कहते हैं वक्त की एक बात बड़ी खास है श्रोतों, कि वक्त बदलता ज़रूर है। तो आज अगर आपका बुरा वक्त है तो घबराइए ना, चिंता ना करिए, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यानी सचिन कपूर लेता हूँ आपसे अलविदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडी गुंजन में आरजे सचिन कपूर को यूं ही सुनते रहिए, सुनाते रहिए। नमस्ते धर्मशाला।

0: चाय।
1: क्या ये?
0: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
0: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तू स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आ जा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no!
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीबी जैसा बनता जा रहा है?

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 FM। प्रस्तुत है आज का समाचार बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे।

सीबीएसई स्कूलों में बंद नहीं होंगे स्कूल कोर्स। 22 नवंबर से होगी हिमाचल टीईटी। 5,659 बिजली बोर्ड पेंशनरों को मिलेगा पूरा एरियर। जलवायु परिवर्तन से बदल रहा नदियों का मिजाज। पुलिस अधिकारियों की मोबाइल से लगेगी हाजिरी। बीपीएल सूची से अलग होगी परिवार पहचान प्रक्रिया। इको टूरिज्म में बेहतर काम करने वाले वन मंडल होंगे सम्मानित।

अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में स्कूल कोर्स बंद करने की योजना नहीं है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि विद्यार्थियों को आधुनिक और रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए नए विषयों को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। प्लम्बिंग और सिक्योरिटी जैसे विषयों को शुरू करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई है। विभाग का मानना है कि स्कूली शिक्षा में व्यावहारिक कौशल को शामिल करने से विद्यार्थियों को आगे रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा विभाग ने सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ व्यावहारिक कौशल उपलब्ध करवाने की दिशा में काम करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड नवम्बर और दिसंबर में अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक टीईटी परीक्षा आयोजित होगी। अभ्यर्थी 11 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड के अनुसार टीईटी में विभिन्न विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद परीक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी बोर्ड की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के हजारों पेंशनरों के लिए राहत की खबर है। वर्ष 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए 5,659 पेंशनरों को संशोधित पेंशन का पूरा एरियर देने का निर्णय लिया गया है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने संशोधित पेंशन का बचा हुआ 100% एरियर जारी करने की अधिसूचना जारी की है। इससे उन पेंशनरों को राहत मिलेगी जिन्हें संशोधित पेंशन का पूरा बकाया अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। बोर्ड की ओर से संबंधित प्रक्रिया के तहत पेंशनरों को भुगतान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों की नदियों पर जलवायु परिवर्तन का असर सामने आ रहा है। अध्ययनों में ग्लेशियरों के पिघलने, तापमान में बढ़ोतरी और नदियों के जल प्रवाह में बदलाव से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ग्लेशियरों में लगातार बदलाव का असर भविष्य में पानी की उपलब्धता, कृषि और पर्यावरण पर पड़ सकता है। हिमालय क्षेत्र में जल संसाधनों को सुरक्षित रखने और बदलते पर्यावरण की निगरानी को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में डिजिटल व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। अब अधिकारियों की हाजिरी मोबाइल के माध्यम से दर्ज होगी। हिम उपस्थिति ऐप में इन आउट पंच अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी उपस्थिति दर्ज करें। साथ ही डेस्कटॉप पोर्टल के माध्यम से अटेंडेंस दर्ज करने की व्यवस्था पर रोक लगाई गई है। विभाग का उद्देश्य उपस्थिति व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की पहचान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। सरकार के अनुसार परिवार पहचान की प्रक्रिया में अब बीपीएल सूची को आधार नहीं बनाया जाएगा।

परिवारों की पहचान निर्धारित प्रक्रिया के। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल किसी परिवार के बीपीएल सूची में शामिल होने या न होने से उसे योजना का लाभ स्वतः नहीं मिलेगा। पात्रता का निर्धारण संबंधित नियमों के अनुसार किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य परिवार पहचान प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और अलग व्यवस्था के रूप में लागू करना है। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने नई पहल की है। इको टूरिज्म में बेहतर कार्य करने वाले वन मंडलों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही रेस्ट हाउस, इको टूरिज्म साइट्स और पार्कों के बेहतर रखरखाव पर भी जोर दिया जा रहा है। विभाग स्थानीय लोगों और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में भी काम कर रहा है। सरकार का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इसका लाभ मिल सके। शाहपुर के विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुर्गेला में शाहपुर जोन की 3 दिवसीय अंडर 19 खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में शाहपुर जोन के 22 स्कूलों के 357 छात्र भाग ले रहे हैं। इस दौरान खिलाड़ी वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी और शतरंज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अपने संबोधन में केवल सिंह पठानिया ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में खेलों का विशेष महत्व है। खेल बच्चों में अनुशासन, टीम भावना और आपसी भाईचारे की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि कर खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए चंबी खेल मैदान को विकसित किया जा रहा है, जिस पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशे के कारोबार से करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को अब अपनी आय का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि नशा बेचकर आलीशान कोठियां, होटल और दुकानें बनाई गई हैं, जमीन और महंगी गाड़ियां खरीदी गई। उन्होंने कहा कि यह पैसा और संपत्ति गरीबों और उन परिवारों की है जिनके बच्चे नशे के जाल में फंसाए गए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और लगभग 3.27 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के लिए नूरपुर पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ निर्णायक जंग जारी है और नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों की कमाई का हर रुपया अब जनता का होगा। उन्होंने कहा कि नशे की कमाई से बनाई गई संपत्ति वास्तव में उन परिवारों की कीमत पर अर्जित होती है जिनके बच्चे इस गंभीर सामाजिक बुराई का शिकार हो जाते हैं। नूरपुर में जब्त की गई संपत्तियों में आलीशान कोठी, भूमि, होटल, दुकानें, वाहन और बैंक खाते शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य नशे के पूरे नेटवर्क, उसकी आर्थिक व्यवस्था और उससे अर्जित अवैध संपत्ति को पूरी तरह ध्वस्त करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस दिशा में पूरी स्वतंत्रता दी गई है तथा उन्हें राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है। आप सुन रहे थे रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 FM का समाचार बुलेटिन। धन्यवाद।

0: चूही? क्या है, क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा हमने पॉकेट में रख लो, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदत तो सही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात करिए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आजा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया, मेरा गेम ओवर।
3: चले,
5: असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीबी जैसा बनता जा रहा है?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: रूही, क्या है, क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गई। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यही हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
2: अरे नहीं सर,
1: कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आजा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
5: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no!
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीवी जैसा बनता जा रहा है?

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यही है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

रंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

291.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आपकी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना श्रद्धा भक्ति और संगीत का संगम सुनिए।

दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आराधना, जहां मन को मिले सुकून और आत्मा को शांति। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों भक्ति संगीत आराधना का ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला भजन।